सुप्रभात, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को है। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा

0: समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे इसकी भाग संख्या 404। मुख्य गायक स्वर हरिहरन और साथियों का, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाए तो मिट जाए, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। आज आपने सुनी इसकी भाग संख्या 404। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। सुविचार। रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में परिणित होते हैं। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, जिसमें आइए सुनते हैं अब ये भक्ति रचना जिसे गाया है पंडित अजय चक्रवर्ती ने।

सुरेश वाडेकर और पंडित अजय चक्रवर्ती की युगल स्वरों में ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। प्रार्थना मन का एक दीपक है। हमारे लिए बेहद आवश्यक है कि इसे हम सदैव जलाए रखें। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अब शोभा गुरटू को।

गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख कर आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदन। मोहिनी राजू और दीप्ति की आवाज में सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम रचना।

इस रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। शुरुआत कर रहे हैं छोटे बाबू फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इंदिवर की बोल, मदन मोहन का संगीत।

वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुप

उंगली न दबा, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुप

0: ये तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे तुमसा नहीं देखा फिल्म से, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। और आइए ये गीत सुनते हैं जिसे लिखा है भरत व्यास ने, तर्ज बनाई है एस एन त्रिपाठी ने। शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

बाज रही है ग्वालनियों की पायल यादे चूम सनन, ओ बाज रही है ग्वालनियों की पायल यादे चूम सनन।

तनवीर नकवी का लिखा और एस मोहिंदर का संगीतबद्ध किया ये अगला गीत सुनते हैं। इसे गाया है तलत महमूद ने, फिल्म है शीरी फरहाद।

आशा भोसले की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार कमर जलालाबादी, संगीतकार सरदार मलिक। चमक चांदनी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

एक और नई सुबह, एक और प्यारी सुबह। इस सुबह खोली है जब आंख मैंने, तो सामने एक और नया दिन चमकती सूरज के साथ नजर आ रहा है। एक बार फिर से चिड़िया ने अपने पंख पसार लिए हैं। आंखें खोलकर जब बाहर की तरफ झांका, तो लगा प्रकृति पूरी तरह से उठ चुकी है। वो नन्हा सा फूल भी मुस्कुरा रहा है, जो कुछ दिन पहले ही एक नए गमले में मैंने लगाया था। हाँ, ये वही पौधा जो मुझे लगता है कि शायद आने वाले मौसम के साथ मेरा साथ नहीं निभाएगा, लेकिन फिर भी अपनी सुबह होते ही मैं इसमें पानी डालना नहीं भूलती। हल्की हल्की हवा की ठंडक के साथ एक तपिश

भी महसूस होने लगी है। दिन चढ़ने लगा है। कानों में पंछियों की आवाज गूंजने लगी है, लेकिन वहीं कहीं दूर गुजरती हुई मोटर की आवाज भी हल्का सा झटका दे जाती है। सारी दुनिया चल पड़ी है अपने दिन की शुरुआत करने, तो वहीं मेरे दिमाग की मशीन भी उतनी ही गति से धीरे धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। यंत्रवत एक के बाद एक ख्याल मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं जो कल रात मैंने बुने थे, लेकिन वहीं एक लंबी फहरिस्त मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आती है जो आज के दिन में मुझे पूरी करनी है। एक बार फिर उठ के मैं बैठ जाती हूँ कि क्या आज का दिन काफी होगा इन सबको पूरा करने के लिए। दिमाग कहता है कि पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल कहता है कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अधूरा रहना चाहिए, तभी तो कुछ नया आता है और हमेशा इंतजार रहता है। नया है आज का अंक, नया है आज का दिन, नई है आज की सुबह और नए हैं आज के विचार। कुछ बातें कुछ गीत लेकर आ चुकी हूँ मैं शैला आपके साथ। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा।

कल रात एक ख्वाब देखा था, कहीं दूर किसी वादी में बैठी हूँ, हल्की हल्की ठंडक हवा की महसूस कर रही हूँ। दिमाग में कोई परेशानी नहीं, ना कोई सोच, ना कोई बात, ना कोई विचारों की रेलम्पेल, ना कश्मकश कि ये करना है, वो करना है, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ तक हो पाएगा, कुछ भी नहीं, बस शांत और सिर्फ शांत। दूर उस पहाड़ की चोटी को देख रही हूँ, हाँ सोच रही हूँ कि उस तक पहुँच जाऊँ। चल पड़ती हूँ, अपने कदम उठा लेती हूँ और उस चोटी की तरफ बढ़ने लगती हूँ, धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हूँ। और जैसे जैसे चलती जाती हूँ, मुझे लगता है कि वो पहाड़ मुझसे और भी दूर होता जा रहा है। थक कर बैठ जाती हूँ, रुक जाती हूँ, कुछ पल के लिए सोचने लगती हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? इसी सोच में उलझी परेशान हुई, एक बार खुद को ये याद आता है कि ये महज एक ख्वाब है। हकीकत में तुम्हें वहीं रुकी हुई हूँ जहाँ कल रात सोई थी। सिरहाने पे वही किताब है जिसे रात में पन्ने पलटते पलटते मैंने रख दिया था। होता है ना अक्सर ये ख्वाब हम सभी के आसपास होता है, कभी ये ख्वाब दिन में आता है, कभी रात में आता है, कि क्या जहाँ हम जा रहे हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, क्या हमें वो अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा, या फिर वहाँ तक पहुँच के लगेगा कि नहीं ये एक मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक पड़ाव था जो हम पार कर चुके हैं और अभी इसके आगे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। इन्हीं सब के साथ मेरा दिन शुरू होता है, फिर लगता है कि क्यों नहीं किया जा सकता, जो सोच रही हूँ वो कर भी तो सकती हूँ। तो उठाती हूँ अपनी वो डायरी जो मैंने बहुत अरमान

से एक छोटी सी दुकान से खरीदी थी और हमेशा सोचा था कि इसमें बहुत सुंदर लिखावट से लिखूंगी जो भी मैं करना चाहती हूँ। बस उस लिस्ट को आज और थोड़ा लंबा कर दिया है। इस डायरी के पन्ने भरते जा रहे हैं मेरी ख्वाहिशों के साथ। आज फिर उसमें मैंने अपनी इच्छाएं थोड़ी और लिख दी। हाँ, ये मैं करना चाहती हूँ, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और जब इन पन्नों को एक बार फिर से पलटती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, खुशी तो मैं ढूंढ सकती हूँ अपने करने से ही, अपने सोचने से ही। उसके लिए मुझे किसी बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच एक बार फिर मुझे ले जाती है उस पहाड़ की चोटी पर और मुझे लगता है कि नहीं, मैं कहाँ थकी हूँ, मैं तो बस शुरुआत कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरे हौसले बढ़ते जाएंगे, मेरी हिम्मतें बढ़ती जाएंगी। उठती हूँ, फिर से चलने लगती हूँ। पास एक बढ़ती हुई बेल को जब देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, आगे तो बढ़ ही रहे हैं। कई बार फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन गति तो है ना। और इस बार मुझे वो पहाड़ अपने नजदीक नजर आने लगता है। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रही हूँ, मुझे वो और साफ दिखने लगा है। बादलों को हटाकर, धुंधलापन छटाकर, मुझे वो चोटी एकदम साफ नजर आने लगती है। और मेरी सुबह एक बार फिर से उसी स्फूर्ति से भर जाती है। ये सुबह आपके लिए भी उतनी ही प्यार और जोश भरी हो। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत।

बिल्कुल जी, तो आपने भी अपने चलने की तैयारी कर ली होगी, लेकिन आपको याद दिला दूं कि सूरज दादा भी चल चुके हैं अपने सफर पे। ध्यान रखिएगा, तापमान बहुत चढ़ने लगा है, अपने आप को संभाल के रखिएगा।

हीट वेव का अलर्ट राजस्थान में निरंतर जारी है और ये भी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में जो तापमान है वो 48 डिग्री के भी पार जा सकता है। हीट वेव के साथ साथ गर्म रातें भी अपना असर दिखा सकती है। हालांकि राहत की संभावनाएं कुछ इलाकों में हो सकती है राजस्थान के, और वो इस तरीके से कि अगर बूंदाबांदी हो जाती है, आंधी चलती है या फिर हवाओं की रफ्तार तेज हो जाती है। फिलहाल हमें अपने आप को इस भीषण गर्मी के लिए तैयार कर लेना बेहद जरूरी है। वो कैसे? वो ऐसे कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पर्याप्त पानी पीना है और गर्म हवाओं से स्वयं को बचा के रखना है। ध्यान रखिएगा, पानी की जो मात्रा है पीने में वो पर्याप्त होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन जल का जो संरक्षण है वो आपको लगातार करते रहना ही पड़ेगा। सूर्यनगरी में जो नहरबंदी हो रही है उससे तो हम सभी वाकिफ हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जल और जल का उपयोग करना सभी का अधिकार है। तो मिलकर, सोचकर, दिमाग लगाकर चले और जल की व्यर्थ बर्बादी भूल के भी ना करें। कुछ बातें, कुछ गीत, बने रहिएगा, बातें आपसे करती रहूंगी। फिलहाल ये गीत आपके लिए है।

कई बार हम कुछ ऐसा छोटा छोटा सा कर देते हैं जिसका असर हमें वैसे रोज़मर्रा में नहीं पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है तो लगता है कि अरे वाह, उस छोटी सी जो हमने क्रियाकलाप किया था, जो छोटी सी हमारी वो आदत थी, वो किस तरह से हमारे लिए एक बड़ा फल बनकर आई, एक बड़ी नतीजे के रूप में हमारे सामने आई। ये बिल्कुल वैसे उस आदमी की तरह है जो रोज अपने कार्यस्थल पर आते और जाते हुए बाहर दरवाजे पर जो चौकीदार बैठा हुआ होता था उसे नमस्कार करता था, उसे भी अभिवादन करता था, हाथ हिलाकर उसे हर सुबह अपने ऑफिस में घुसते वक्त और फिर जब शाम में बाहर निकलता था तब भी उसे अभिवादन करते हुए निकल जाता था। ये उस आदमी की रोज़मर्रा की आदत थी। हालांकि उस कार्यस्थल पर ऐसा बहुत कम होता था कि हर कोई उस दरवाजे पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से अभिवादन करे, इसलिए जो गार्ड था उस कार्यस्थल का, उसे याद रहता था कि हाँ, आज वो व्यक्ति अंदर गया है, इस वक्त वो अब बाहर आएगा। एक शाम ऐसा हुआ, वैसे ही रोज़मर्रा किसी कार्य का दिन था और जो कार्यस्थल है वो अपने तय अनुसार समय पर बंद हो गया, सभी अपने घर चले गए और फिर वो जो गार्ड था वो भी अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जो व्यक्ति था जो उस गार्ड को रोज़ अभिवादन किया करता था, उस व्यक्ति के घर से परिवारजन आए और उन्होंने आकर ये पता लगाया कि आज ये व्यक्ति अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते कार्यस्थल के हर व्यक्ति के पास पहुंचाई गई कि भाई इनका पता लगाया जाए। गार्ड तक भी ये बात पहुंची और उसके बाद गार्ड ने जब अपने दिमाग पर जोर लगाया तो उसे याद आया कि आज तो वो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले थे, क्योंकि मुझे ध्यान है जब वे सुबह अंदर गए थे उनसे मेरा सलाम नमस्ते हुआ था, लेकिन शाम के वक्त मुझे कतई ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने उन्हें शाम का अलविदा कहा हो। उसके बाद ऑफिस के गेट्स खोले गए और पता चला कि किसी कमरे में भूलवश वो बंद हो गए थे और बाहर से उस कक्ष का जो दरवाजा है उसे ताला लगा दिया गया था। अपने आप को वो बाहर किसी भी तरीके से नहीं निकाल पाए और अंदर ही इंतजार करते रह गए। लेकिन जब ये सब घटना आधी रात में हुई, उन्हें बाहर निकाला गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वाह, अगर हम कुछ छोटा छोटा सा भी अच्छा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसका परिणाम हमें उसी वक्त मिले, कभी ना कभी वो अच्छाई लौट कर हम तक आती है। और मान लीजिए ना भी आए, लेकिन उसे करने से अच्छा हम स्वयं को ही तो बना रहे हैं। जो भी कुछ प्रगति हो रही है वो हमारे मन के भीतर हमारी ही तो हो रही है।

आपकी जिंदगी में भी संगीत की धुनें इसी तरह बजती रहें, इसी तरह खुशनुमा रहें और इसी तरह जिंदगी में खुशियों की लहरें आती रहे। बस कुछ बातें कुछ गीत में आज के लिए इतना ही। इस प्यारे से ट्रैक के साथ आपको छोड़े चली जा रही हूँ। आप सुन रहे थे आज ये कार्यक्रम मेरे यानी शैला के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, लीजिए सुनिए समाचार प्रभात और तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था

0: केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश

0: उम्मीद बड़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में

0: कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आकडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सारना में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: भारत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण

0: कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said The visit of the Prime Minister is highly opportune.

0: दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और मैं हूं आपके आज के होस्ट मनीषा जोशी बोहरा और समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का। वही प्रोग्राम जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और इसके साथ ही रखेंगे आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, मनीषा के साथ मैं हूँ आपके आज के नमस्कार की हम सफर स्वाति। और आज की नमस्कार की क्रिएटिव टीम में इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं HPT ट्रांसमीटर से पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी। वही FM ट्रांसमीटर से हैं CL सोनी। तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं नरेंद्र सिंह राठौड़।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी है शैला महेश्वरी। और FM से हमारे साथ हैं निशिका बोराणा।
1: आज के कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने।
0: और कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की।
1: बहुत सारी बातें शेयर करनी है आपसे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, लेकिन इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के बाद

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। और अब बात पत्थरों की। एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था और उसने दो एक जैसे पत्थर खरीदे और उसने पहले पत्थर से कहा कि मैं तुमसे एक सुंदर मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन वो पत्थर डर गया, बोला नहीं नहीं, छेनी हथौड़ी की चोट तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा, बस मुझे ऐसे ही रहने दो। और फिर तब उसने दूसरे पत्थर से वही बात कही।
1: हाँ, और दोस्तों दूसरे पत्थर ने क्या जवाब दिया? वो मुस्कुराया और बोला कि हाँ, मैं तो तैयार हूँ, अगर दर्द के बाद मैं कुछ बन सकता हूँ तो मुझे मारो और तराशो। और मूर्तिकार ने महीनों मेहनत की, छेनी के हर चोट पर दूसरा पत्थर दर्द से कराहता, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उस पत्थर से एक अद्भुत भगवान की मूर्ति बन गई। और जो दूसरा पत्थर था उसके साथ क्या हुआ, ये सुनने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले आपको सुनवाते हैं एक ट्रैक और फिर बताएंगे कि उस दूसरे पत्थर के साथ क्या हुआ।

0: दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुना रहे थे दो पत्थरों की। एक पत्थर था जो मेहनत से नहीं डरा और उसने मूर्तिकार को कहा कि आप मुझे मारिए और मुझे तराशिए। तो तराशने के बाद में वो बना एक मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित हुआ। और जो दूसरा पत्थर था जो डर गया था, वो उसी मंदिर में सीढ़ियों पर लगाया गया। अब हाल ये था कि हजारों लोग रोज आते और भगवान की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते, जिसे कि तराश कर मूर्तिकार ने बनाया था, और सिर झुकाते उसके सामने। और उसी तरफ दूसरी तरफ उसी मंदिर में आने जाने वाले भक्त पहले वाले पत्थर यानी कि सीढ़ियों को पैरों तले रौनते हुए जाते। तो एक दिन सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति से पूछा कि हम दोनों एक जैसे थे, फिर तेरी इतनी पूजा और मैं पैरों तले क्यों हूँ? तब मूर्ति हंसकर बोली, क्योंकि तूने डर कर तराशे जाने से मना कर दिया था और मैंने हर चोट को सहा, इसीलिए आज इस काबिल बन पाया।
1: बिल्कुल। तो हमारी जिंदगी में भी कभी भी सफलता जो है वो बिना संघर्ष के तो नहीं मिलती। अगर जिंदगी की मुश्किलों की अगर हम चोट सह लेते हैं तो बस आगे बढ़ते जाते हैं। मुश्किल इस बात में नहीं कि हमने जिंदगी में ठोकर खाई, मुश्किलें तब पैदा होती है जब हम ठोकर खा के जब गिर जाते हैं और उठने से आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। तो बस मुश्किलों से पार पाना है तो उठिए, आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसका आनंद लीजिए और बस चलते चलते इस सफर का भी आनंद लीजिए। और मंजिल वो एक हमारे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल तो हो सकता है, लेकिन ना मिले तो भी जिंदगी में चलते रहने का आनंद तो है ही।

के बिन तेरे जीना नहीं। बिल्कुल, हम आप श्रोताओं के साथ भी तो यही फील करते हैं ना, आप श्रोता हैं तो हम हैं बिल्कुल। और ये गाना जो है वो खूबसूरत सी आवाज़ थी मिठुन की और फिल्म थी अगर, तो बिन तेरे जीना नहीं। लेकिन ये तब भी हो सकता है जब हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तब ये जीना भी तो कितना खूबसूरत होता है। बिल्कुल, ये जो मौसम है दिन में तो तेज़ गर्मी है, और कल शाम जैसे जोधपुर का मौसम तो एकदम से बदल गया, आंधी सी आ गई, मौसम में थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया।

0: लेकिन ये जो बदलाव है कई बीमारियां और परेशानियां भी लेके आ सकता है, तो ऐसे में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि अगर जो भी मौसमी फल सब्जियां आ रहे हैं वो ज्यादा खाएं, और खास तौर पर जिनमें विटामिन सी होता है, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें, पानी जो है वो हमेशा अपने साथ कैरी करें ताकि हाइड्रेटेड रहें। और बिल्कुल मनीषा, कल जैसे मौसम एकदम से बदला, तो जो लोग दिन भर अपने घर की सफाइयों में लगे होते हैं, सुबह सुबह जब सब सफाई करी और शाम को आ गई आंधी, तो थोड़ा गुस्सा तो आता ही है ना।
1: गुस्सा तो आता है, लेकिन हर चीज़ अगर हम उसके दो पहलू होते हैं, अगर हम उसके पॉजिटिव पहलू पे जाएं तो टेम्परेचर तो डाउन हुआ ही है, तो उससे थोड़ा सा तो हमें सहारा मिला ही है, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में और इतनी जो लू चल रही है उससे थोड़ी तो कम से कम हमें निजात मिली।
0: बिल्कुल, तो तुम्हारे इस पॉइंट से मुझे एक जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफें हों, उसमें अगर हम एक सकारात्मकता को ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, तो बस यही हमारे माइंडसेट के अच्छाई को दर्शाती है। और जीवन में जो है आगे बढ़ने का हमेशा हमें एक जो है वो अप्रोच देती है, तो बस ऐसी ही अप्रोच हम हमेशा बनाए रखें। और ये जो खूबसूरत गीत हैं, ये भी तो हमें वही पॉजिटिविटी देते हैं। तो अगला खूबसूरत गीत फिल्म गुलाब गैंग से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार जिन्हें जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर

नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रूपये और डीजल करीब 3 रूपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है।

0: और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कॉर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि ईंधन की बचत आज के समय की जरूरत है, हर देशवासी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
1: ईंधन को बचाना है, ये हर भारतीय को ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्र हित के लिए कहते हैं। आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी हमारी चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है वो ये गाड़ी जो मुझे मिली है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूंगा और एस्कॉर्ट गाड़ी इसका उपयोग नहीं करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबियत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कॉज मालूम करेंगे। गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसका अगेंस्ट केस लगाएगा। तो बेहतर हुई उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस में देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू बहाए।
0: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार

0: जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: न्यूज ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जो कि इस वक्त ट्यून्ड है आपके रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।
2: और जी दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा जोशीवारा और मेरे साथ हैं
1: स्वाति। और बिल्कुल बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है आज के प्रोग्राम में।
2: बिल्कुल, जानकारियों से सजे इस प्रोग्राम में आपको जानकारियां देंगे, लेकिन सुनवाते हैं अभी आपको पहले प्यारा सा गीत।
3: I love you.

0: ये जो खूबसूरत गीत आपने सुना वो एक भाई बहनों के बीच में छोटी मोटी जो नोकझोंक होती है उनके बीच का जो प्रेम होता है उसे दिखाता है। और बिल्कुल एक परिवार में जब भाई बहनों के बीच इस तरह की तकरार प्यार होता है तो घर में माहौल कुछ अलग ही बन जाता है। आज वो खास दिन है जब हम परिवार के महत्व को जानेंगे और आज की खास बात में भी हम यही बात करेंगे। लेकिन इस खास बात से पहले जानते हैं इतिहास के आईने में आज का दिन हमें कैसे दिखता है और सुनाई पड़ता है। तो बिल्कुल इतिहास की वो गूंज आज जो हमारे कानों में पड़ रही है उसमें आज सबसे पहले बात करते हैं साल 1957 की।
1: जी दोस्तों, 1957 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने प्रशांत महासागर में पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया था।
0: और
1: 1958 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने स्पुतनिक 3 रॉकेट लॉन्च किया था।
0: और अब बात करते हैं साल 1991 की। वैसे तो ये साल बहुत सारे राजनीतिक उठापटक और सरगर्मियों से भरा हुआ था और भारत के लिए भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण साल था जब भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली थी, जब LPG मॉडल यूज किया गया था यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इस साल में आज का जो खास दिन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये साल फ्रांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री आज ही के दिन बनी थी, श्रीमती एडिथ क्रेसन। 15 मई 1991 से लगाकर 2 अप्रैल 1992 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया और बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ।
1: उन्नीस सौ तिरानवे में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उन्नीस सौ पंचानवे में आज ही के दिन एलिसन गारग्रेव्स ने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी फतह की थी।
0: और फिर जब महिला सशक्तिकरण की बात ही चल रही है तो सन 1999 में भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि कुवैत सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक जो है वो प्रदान किया गया है, वो दिन आज ही का था। और वहीं साल 2008 में भारतीय मूल की मंजुला सूद जो है वो ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। तो बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो आज का दिन यानी कि 15 मई का दिन भले ही साल अलग अलग हो लेकिन एक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। और बिल्कुल जब दुनिया की आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरे जो परिवार है उसमें भी एक सशक्तिकरण जो है वो दिखाई देता है। परिवार में जुड़ाव में महिलाएं जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और बिल्कुल जब महिलाएं अपनी खुद की पहचान साबित करना चाहती हैं तो कानों में कुछ खूबसूरत गीत की पंक्तियां गूंजने सी लगी है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जो मन की उड़ान को बहुत ही अलग ऊंचाइयों तक लेके जाता है।

जी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज विश्व परिवार दिवस है। 15 मई को हम हर वर्ष विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। दोस्तों, प्राणी जगत में परिवार सबसे छोटी इकाई है, या फिर इस समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है, और ये सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है, उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा जा ही नहीं सकता। दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने आप को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई भी आँच नहीं आई है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में पल रहे हों, लेकिन अंत में हमें अपने संबंधों को विवाह संस्था से जोड़कर परिवार में परिवर्तित करने के में ही अपनी संतुष्टि का अनुभव हम

0: करते हैं। दोस्तों, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी 1994 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष दिवस घोषित किया इस वर्ष से, और समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाने लगा। 1995 में ये सिलसिला तभी से जारी हो चुका है और अब तक चला आ रहा है, और परिवार की महत्ता समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी इसी दिन आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन के लिए जिस प्रतीक चिन्ह को चुना गया है उसमें हरे रंग के एक गोल घेरे के बीचों बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है ना, बहुत ही सुंदर। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है, और परिवार ही हर उम्र के लोगों को सुकून पहुंचाता है।
1: बिल्कुल, वो परिवार ही है जो हम सबको बांधे रखता है। और इसी बात का महत्व बताते हुए अथर्ववेद में भी परिवार की कल्पना की गई है और कहा गया है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना, जाया पत्ये मधुमति वाचम वदतु शांतिवाम। यानी कि पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोले। यानी परिवार कुछ लोगों के सिर्फ साथ रहने से ही नहीं बन जाता, बल्कि एक रिश्तों का मजबूत डोर जो है वो सभी लोगों को इसमें बांधे रखती है। सहयोग होता है, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे होते हैं, और बिल्कुल कहा भी गया है ना कि चाहे कितनी भी बोलचाल हो जाए, कितना भी मतभेद हो जाए, लेकिन भाइयों के बीच में मन भेद नहीं होना चाहिए। यह हमारे यहाँ पर परिवार की जो धुरी बताई गई है वो अपने आप में हम सबको बांधे रखती है, और कुछ जिम्मेदारियाँ भी तो उठानी होती हैं। और वैसे परिवार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिम्मेदारियों के, कर्तव्यों के और अधिकारों के, जो सहज रूप में हमें मिल जाते हैं। और बिल्कुल याद आती है दुल्हनदास की पंक्तियाँ, जहाँ उन्होंने कहा है, दुल्हन ये परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरी परे जहां जहां जले सब बटाऊ लोग। बिल्कुल, तो सब एक साथ जहां पे परिवार की नाव उतरने लगती है, बिल्कुल नदी और नाव के संजोग की तरह है, तो बस वहीं पर सब लोग साथ ही चलने लगते हैं। अलग अलग होते हुए भी, अपनी अलग अलग पहचान बनाते हुए भी, एक जिस डोर से सब बंधे हैं वो डोर है परिवार। बिल्कुल, और अगर इस परिवार को अपने आप को बांधे रखना है तो कर्तव्य, त्याग और जिम्मेदारी, इन सबको हर एक पारिवारिक सदस्य को समान रूप से समझना होगा। घर तभी बनता है जब जितने भी घर के सदस्य हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐसा ना हो कि कुछ घर के काम हैं वो किसी एक व्यक्ति के कर्तव्य मान लिए जाएं, और बाहर के काम हैं वो दूसरे के कर्तव्य मान लिए जाएं। अगर सिर्फ ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किलें खड़ी होने लगेंगी, फिर संवाद जो है वो कम होने लगेगा। और बिल्कुल, किसी ने पूछा भी किसी से कि अरे आपका परिवार इतना खुशहाल कैसे है, तो कहा गया जवाब में कि हम संवादों को शिकायतों से ऊपर रखा करते हैं, और बस पारिवारिक की खुशहाली की बस यही नींव है। और अच्छा गीत संगीत तो हमेशा हमारे जीवन में खुशियों को लाता ही रहता है, तो एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए इसके बाद हमारे लिए और आपके लिए तैयार रहेगी शुक्रवार की खास किताब सप्ताह विशेष में। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, इस गीत के बाद सुनवाते हैं आपको।

0: बिल्कुल, इट्स माय फैमिली, तो वो ये हमारा परिवार ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि एक परिवार की तरह ही मानो सब संगी साथी लगने लगते हैं। आज सप्ताह विशेष में शुक्रवार की किताब में जिस किताब का जिक्र हम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह की बात है कि जहाँ कुछ ऐसे किशोर हैं जो आपस में दोस्त ना होते हुए भी दोस्त बन जाते हैं, एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किताब द मिडनाइट क्लब की, जो लिखी है क्रिस्टोफर पाइक ने। ये एक मनोवैज्ञानिक, रहस्यपूर्ण और भावनात्मक उपन्यास है। जीवन और मृत्यु के बीच झूलते युवाओं की संवेदनाओं को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है ये उपन्यास। सिर्फ डर या रहस्य की कहानी नहीं है, बल्कि एक मानव मन के भीतर जितने भी भय, आशा, दोस्ती, प्रेम, मृत्यु, इन सभी को समझने का प्रयास है। वैसे जो इसके लेखक है क्रिस्टोफर पाइक, उनका वास्तविक नाम केविन मैकफेडन है। अमेरिकी युवा साहित्य के प्रसिद्ध लेखक रहे। सन 80 और 90 के दशक में उन्होंने किशोरों और युवाओं के लिए बहुत सारे रहस्य, थ्रिलर और हॉरर उपन्यास भी लिखे। और सबसे बड़ी खासियत ये रही कि सिर्फ डर ही नहीं पैदा करते उनके उपन्यास, बल्कि जीवन के दार्शनिक प्रश्नों को भी उठाते हैं। और अक्सर इनके उपन्यासों में मृत्यु, आत्मा, परलोक, अपराध बोध, मानव मन की जितनी भी जटिलताएं हैं, उन सब का चित्रण कहीं ना कहीं मिलता है। और उनकी सबसे चर्चित कृतियों में से एक मानी जाती है द मिडनाइट क्लब, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इस पर हालांकि एक लोकप्रिय वेब सीरीज भी बनी, जिससे जो नई पीढ़ी के लोग थे उसमें भी इनकी लोकप्रियता बढ़ गई।
1: जी दोस्तों, मिडनाइट क्लब की कहानी एक ऐसे हॉस्पिस में घटित होती है जहां कुछ गंभीर रूप से बीमार किशोर रहते हैं। डॉक्टरों ने तो लगभग तय कर दिया है कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे कठिन वातावरण में भी वे युवक युवतियां हर रात आधी रात को एकत्र होकर कहानियां सुनाते एक दूसरे को, और इसी कारण उनका समूह मिडनाइट क्लब कहलाता है। दोस्तों, ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, वे उनके डर, इच्छाओं, पछतावों और जीवन के अधूरे सपनों का प्रतीक होती हैं। और कहानी धीरे धीरे रहस्यपूर्ण होती जाती है। जब क्लब के सदस्य ये वादा करते हैं कि जो भी पहले मरेगा वो मृत्यु

0: के बाद किसी संकेत के माध्यम से बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये उपन्यास जो है उसके मुख्य पात्र इलोंका नामक लड़की है जिसे कैंसर है और वह ब्राइट क्लिफ हॉस्पिटल हॉस्पिस में रहने आती है और वहाँ उसकी मुलाकात अन्य युवाओं से होती है जो विभिन्न असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं। शुरू में वातावरण उदास और भयावह लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो महसूस करती है कि ये सभी लोग मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भी जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और हर रात क्लब के सदस्य अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं और इन कहानियों में रहस्य, अपराध, प्रेम, भय और अलौकिक घटनाएं शामिल होती हैं। दोस्तों, कहानियों के माध्यम से प्रत्येक पात्र का आंतरिक व्यक्तित्व सामने आता है। कोई अपने अकेलेपन को छिपाता है, कोई अपने भय को, तो कोई मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर जिज्ञासु है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब सभी सदस्य आपस में ये संकल्प लेते हैं कि एक दूसरे को संकेत तो देंगे। और बिल्कुल यहाँ पर एक भावपूर्ण विचार में क्रिस्टोफर पाइक लिखते हैं कि हम सब मरने वाले थे, फिर भी हम कहानियां सुना रहे थे। ये मूल संदेश को व्यक्त करती है उपन्यास के, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि जीवन जीने की इच्छा का प्रतीक है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सभी पात्र अपनी कल्पनाओं को, भावनाओं को, सपनों को जीवित रखते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अर्थ रूप में खोजने का प्रयास करते हैं। और कहानी तो कहना यहाँ कई बार एक प्रतिरूप का रूप बन जाता है कि जहाँ हम कह रहे हैं कि मृत्यु के विरुद्ध एक मानसिक संघर्ष सभी के अंदर चल रहा है। एक और जगह पे पात्र जब ये कहते हैं कि यदि मृत्यु के बाद कुछ है तो वे वापस आकर संकेत देंगे, ये मनुष्य की उस जिज्ञासा को भी तो दिखाता है जहाँ सदियों से मृत्यु के रहस्य को समझना मानव मन में हमेशा से एक प्रश्न रहा है। पाठकों को सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं क्रिस्टोफर पाइक कि क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या किसी नए अस्तित्व की शुरुआत है।
0: जी दोस्तों, उपन्यास का सबसे बड़ा विषय है मृत्यु। सभी पात्र जानते हैं कि उनका अंत निकट है, फिर भी वे टूटते नहीं हैं बल्कि अपने डर का सामना करते हैं। दोस्तों, लेखक ने दिखाया है कि मृत्यु का भय केवल शरीर का नहीं बल्कि अधूरे सपनों और बिछड़ते संबंधों का भी होता है। उपन्यास यह सिखाता है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसे जीने का तरीका महत्वपूर्ण है। जिन पात्रों के पास कुछ ही महीने बचे हैं वे भी छोटी छोटी खुशियों में अर्थ खोज लेते हैं। क्रिस्टोफर पाइक की भाषा सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक है और वे रहस्य और संवेदनाओं को संतुलित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संवाद बहुत स्वाभाविक लगते हैं और पात्रों की मानसिक स्थिति को गहराई से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, लेखक ने भय पैदा करने के लिए अत्यधिक डरावने दृश्यों का सहारा नहीं लिया है बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव का निर्माण किया है और यही कारण है कि उपन्यास पाठक को अंत तक बांधे रखता है। द मिडनाइट क्लब केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, ये जीवन को समझने की कहानी है। लेखक बताना चाहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है लेकिन उससे पहले का जीवन हमारे हाथ में है। उपन्यास ये भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा, मित्रता और कल्पना मनुष्य को जीवित रखती है। मृत्यु का सामना करते हुए भी पात्रों का हंसना, कहानियां सुनाना और सपने देखना मानव आत्मा की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है।
1: बिल्कुल, तो आज शुक्रवार की किताब ने हमने जाना क्रिस्टोफर पाइक द्वारा लिखित उपन्यास द मिडनाइट क्लब के बारे में। तो बिल्कुल, ये जीवन की सच्चाई हमें पता चलती है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं बस किसी न किसी धुंध से आ रहे हैं और किसी न किसी धुंध में जा रहे हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये कुछ एक खास गीत की ओर इशारा कर रही है, तो बिल्कुल आपको सुनाते हैं वही खास गीत।

0: दोस्तों, अब आज काम की बात के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि फ्यूल की बचत हम कैसे करें। तो उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स शेयर करेंगे। दोस्तों, ड्राइविंग की जो सही आते हैं अपन अपना कर उसे 10% तक हम बचत कर सकते हैं फ्यूल की। और इससे न सिर्फ खर्च कम होता है बल्कि प्रदूषण भी घटता है और वाहन की उम्र भी बढ़ती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, हम ड्राइविंग करते हैं लेकिन हम बार बार तेज एक्सीलेटर को दबाते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं और ईंधन की खपत को हम अनजाने में ही बढ़ा देते हैं। और गाड़ी को एक रफ्तार में और सीमित गति में अगर हम चलाएंगे तो इसी से हम इसकी जो ईंधन की खपत है उसे बढ़ा देंगे और हम एक सही दिशा में अपने गाड़ी को, अपने ड्राइविंग को ले जाएंगे।
1: बिल्कुल। और अगर आप कम हवा वाले टायरों का प्रयोग करते हैं तो वो इंजन पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, माइलेज को घटा देते हैं। तो हर हफ्ते टायर का प्रेशर चेक करवाएं, उससे इंजन पर बोझ नहीं आता और फ्यूल की खपत भी कम होती है।
0: इसके साथ ही हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम ट्रैफिक में हो, लंबी रेड लाइट हो, गाड़ी खड़ी हो, तो इंजन को तुरंत बंद कर दें। इससे काफी फ्यूल बचता है और रेड लाइट वाले चौराहों पर गाड़ी की वेटिंग जो होती है वो 30 सेकंड से अधिक अगर होती है तो उस वक्त तो इंजन बंद कर ही देना चाहिए, क्योंकि शहरों का जो वातावरण भी इसे सुरक्षित बनाने में हमें कारगर साबित होता है। और हम बिना जो धुएं को फैलाकर और एक प्रदूषण फैलाने में भी हम मदद करते हैं, उसे रोकते हैं गाड़ी के इंजन को बंद करके।
1: और ये जो वेटिंग समय है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है इसलिए इसको 30 सेकंड की बात की जाती है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी गर्म होती है, वातावरण भी गर्म है। अगर सर्दियों का समय है तो फ्यूल बचाने के लिए हम 60 सेकंड का वेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाड़ियों की समय पर सर्विसिंग भी करवानी चाहिए, क्योंकि अगर सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो ऐसे में जो एयर फिल्टर है, इंजन ऑयल है, वो सब जो है गाड़ी की उम्र को बढ़ा देंगे और पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम करेंगे।
0: इसके साथ ही दोस्तों, हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम गाड़ी में अनावश्यक सामान नहीं ले जाएं, क्योंकि ज्यादा सामान आवश्यकता से अधिक रखने से उसे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल की खपत जो होती है वो बढ़ जाती है। और यात्रा के दौरान हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अनावश्यक भार ले जाने से बचे हैं।
1: और हर गाड़ी में रफ्तार के अनुसार ही गियर लगाना चाहिए। अगर गलत गियर में सफर किया जा रहा है तो ईंधन ज्यादा खर्च होता है, तो स्पीड के हिसाब से सही गियर चुनें।
0: इसके साथ ही मैनुअल गाड़ी और बाइक में क्लच को आधा दबाकर रखने की आदत फ्यूल बर्बाद करती है। इससे क्लच प्लेट को नुकसान पहुंचता है और ईंधन भी अनायास कम होता जाता है।
1: बिल्कुल। और अगर गर्मी के मौसम में, वैसे तो गाड़ी में एसी चलाया जाता है, लेकिन अगर आप लगातार हाई एसी चला रहे हैं तो उससे माइलेज घटता है, तो जरूरत हो तो एसी ऑन करें। कोशिश करें कि अगर सुबह का समय है या शाम का समय है तो नेचुरल हवा भी सफर में आनंद दे सकती है, लेकिन हाँ, दिन में गर्मी है तो एसी जो है वो आप जरूरी नहीं है कि फुल मोड पे चलाएं, उससे थोड़ा सा कम भी आप चला सकते हैं और अपना माइलेज बढ़ा सकते हैं।
0: इसके साथ दोस्तों, हम बात करते हैं कि जैसे भीड़भाड़ वाले जो रूट होते हैं हम उनको छोड़ सकते हैं, जहां ट्रैफिक कम हो हम उस रास्ते

0: चुन सकते हैं, क्योंकि बार बार रुकने से चलने से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है और इस दौरान क्लच का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है।
1: और एक खास बात, आप हमेशा विश्वसनीय पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल या डीजल भरवाएं, क्योंकि अगर घटिया फ्यूल इंजन का प्रयोग किया जाता है तो इससे इंजन और माइलेज दोनों को ही नुकसान पहुंचता है और जो है आपके फ्यूल का खर्च बढ़ जाता है। और खास बात ये भी है कि कई बार कुछ जो विशेष रूप से बाइक प्रेमी होते हैं उनकी आदत होती है खड़ी बाइक को भी बार बार रेस देते रहते हैं, तो इससे भी पेट्रोल बर्बाद होता है और कई बार कार में भी ऐसा ही लोग करते हैं। तो इस आदत से बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप गाड़ी सजग होके चलाएं और जब भी गाड़ी स्टैंड बाय मोड पे हो, चालू मोड पे हो, तो उसमें बार बार रेस ना दें।
0: इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम अपनी स्पीड को मेंटेन रखेंगे तो वो भी हमें फ्यूल बचाने में काफ़ी इफेक्टिव होती है। जैसे कि कार के लिए एक निश्चित की गई है कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और बाइक के लिए 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो फ्यूल बचाने में हमें बहुत ही मदद मिलती है।
1: और ये जो स्थिरता की बात हुई है, अगर परिवार में भी एक स्थिरता मेंटेन की जाए तो बहुत ही परिवार जो है वो सुचारू रूप से चलता है। ये बात तो है, जैसे माइलेज की बात हम गाड़ियों में करते हैं, फ्यूल बचाने की बात करते हैं, वैसे रिश्तों की गर्माहट को पर्याप्त रूप से बनाए रखने के लिए अधिकारों की बात भी जरूरी है, कर्तव्यों की बात भी जरूरी है। और अगर ये सारी ही चीजें साथ साथ चलें, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ ले, तो राष्ट्र तो हमारा खुशहाल होगा ही, परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। तो बिल्कुल एक खूबसूरत सा गीत मेरे कानों में कहीं गूंजने लगता है, जहां पे परिवार को एक बगिया के रूप में संवारने की बात की गई है। आपको भी सुनवाते हैं फिल्म 3 बहू रानियां से ये खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं के एम करियप्पा यानी कि कौंडन्येरा मड़प्पा करियप्पा की, जो कि भारत के महान सैन्य अधिकारियों में से एक थे। वे भारत स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने और उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। दोस्तों लोगों ने प्यार से के एम करियप्पा या किप्पर भी कहते थे। उन्होंने 28 जनवरी 1899 में वे पैदा हुए और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटक में ली और बाद में सेना में भर्ती हो गए। भारत की आज़ादी के बाद वे 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने और सेना में उन्हें अनुशासन, एकता और पेशेवर क्षमता को मजबूत किया। 1947-48 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी, जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य पद है।
1: बिल्कुल। और जब देशभक्तों की बात आती है तो आज याद आते हैं सुखदेव। 15 मई 1907, यही वो दिन था जब जन्म हुआ उनका। और ख़ास तौर पर ये जो हैं वो बचपन से ही देश के लिए अपने जान नौछावर करने को तैयार हो गए थे। और जब मात्र वे 12 वर्ष के थे तो ऐसे समय जब हुआ जलियांवाला बाग का भीषण नरसंहार, तब पंजाब के प्रमुख नगरों में लगा दिया था मार्शल लॉ। स्कूल और कॉलेजों में ब्रिटिश अधिकारियों को सल्यूट करना पड़ता था, जितने भी भारतीय छात्र हैं उन्हें। लेकिन तब भी सुखदेव ने दृढ़ता दिखाई और कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मार भी खाना मंजूर किया लेकिन सल्यूट करना मंजूर नहीं किया। और जब स्कूल से पास कर होकर लाहौर के कॉलेज में प्रवेश लिया तो फिर मुलाकात हुई भगत सिंह से। एक ही राह के तो पथिक थे दोनों, मातृभूमि की राह के, तो दोनों का परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया। और उसके बाद साथ मिला राजगुरु का, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों की जो तिकड़ी थी वो देश के लिए अपनी जो है आन बान शान जो है उसको बनाने के लिए अपने आप को न्यौछावर करने को ये तैयार हो गए थे। आपस में अच्छे मित्र बने और 23 मार्च 1931, ये वो दिन था जब इन तीनों वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दी गई। लेकिन आज भी इनका नाम भारत के अमर सपूतों में लिखा जाता है, शुमार किया जाता है और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है सुखदेव।

0: दोस्तों इसके साथ ही हम जॉनी वॉकर, जो कि भारत के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं, उनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, इनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। 15 मई 1923 को जन्मे और इनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में की थी और बाद में यात्रियों में से मजाकिया बातें करना उनका शगल था, जिसने बलराज साहनी को आकर्षित किया और फिर बलराज साहनी ने इन्हें गुरुदत्त से मिलवाया और संवेदना और हास्य के दो शिखर एक हो गए, जिसने हिंदी सिनेमा के लिए नई परिभाषाएं गढ़ी। बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, कागज़ के फूल, प्यासा जैसी गुरुदत्त की कई फिल्मों की एक समानांतर पहचान बनाने में वे जॉनी वॉकर इस भूमिका में रहे और चोरी चोरी, नया दौर, मधुमती, मेरे महबूब, आनंद जैसी आदि फिल्मों में जॉनी वॉकर ने अपनी मीठी फुहार की तरह राहत उन्होंने दी और उन फिल्मों में एक अपना अलग ही मुकाम बनाया और अपने अभिनय के लिए वे हमेशा याद किए जाते हैं। जब दर्शकों ने को फिल्म की गंभीरता से उबरना मुश्किल लगती थी तो वे उनके हंसी मजाकिया वाले अभिनय को देखते थे और बस उसमें डूब जाते थे और अपनी जो दुखों को भूल जाते थे और उनकी एक अलग ही मुस्कान में, उनकी कॉमेडी करने के अंदाज़ में एक सुकून उन्हें मिलता था और बस फिल्मों को कई बार पार लगाने में उनकी मुख्य भूमिका भी रहती थी और लोग उनकी अदाकारी को बहुत ही पसंद करते थे। बरसों बाद भी कमल हासन के साथ जब वे चाची 420 में दिखे तो उतने ही जीवंत, उतने ही ताज़ा दम में वे थे और 1959 फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी उन्हें मधुमती से मिला।
1: बिल्कुल, और जब मधुमती की बात चली है तो मधुमती फिल्म से ही ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: गोरी गोल गोल अखियां शराबी।
1: बिल्कुल। और अब बात एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने हिंदी फिल्मों में जो है अभिनेत्रियों में अपना नाम एक अलग ही मुकाम पर रख दिया है, और जब एक नृत्यांगना के रूप में आई तो फिर कमाल कर दिया। जब अदाकारी के रूप में इन्होंने जो कुछ फिल्मों में जो संवेदनशीलता दिखाई तो एक सर्वश्रेष्ठ अदाकारा के रूप में भी ये जाने जाने लगी। और इन सब से ऊपर जब हिंदी फिल्मों में महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो स्टारडम जो है वो भी इस अभिनेत्री ने हासिल किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माधुरी दीक्षित की।

जी दोस्तों, बिल्कुल माधुरी दीक्षित नाम ही काफी है, जिन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान, अभिनय और शानदार नृत्य शैली के कारण धक धक गर्ल के नाम से भी फेमस हुई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही रुतबा कायम किया। दोस्तों, 15 मई 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्मी माधुरी दीक्षित को बचपन से ही कथक का शौक था, तो उन्होंने सीखा और वो उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए उनकी एक पहली सीढ़ी भी बना और वे धीरे धीरे बॉलीवुड की बड़ी स्टार बन गई।

बिल्कुल। और अब नमस्कार कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको सांस्कृतिक समाचार। कल यानी कि 16 मई से अधिक मास का आरंभ हो रहा है और जोधपुर शहर में इस समय भागवत कथाओं का विभिन्न क्षेत्रों में आयोजन किया जाएगा। आज भी रक्तदान शिविरों और स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन पूरे जोधपुर शहर में किया जाएगा। वहीं पशु पक्षियों हेतु गर्मियों के प्रकोप से बचाव के लिए परिंडे भी आज लगाए जा रहे हैं। अब चलते हैं खेल खबरों की तरफ। तो आईपीएल के 19वें संस्करण के कल खेले गए 58वें मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया और वहीं आज का मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। वहीं बैडमिंटन के थाईलैंड ओपन में पीवी सिंधु, सात्विक चिराग की जोड़ी और लक्ष्य सेन इन तीनों ने ही क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और वहीं एशियन वेटलिफ्टिंग में अजीत नारायण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। ये तो थी आज की खेल खबरें और अब आपको लिए चलते हैं नमस्कार के समापन गीत की ओर।

0: ये दोस्तों आज के नमस्कार के अंक में इतना ही। मुझे यानी कि मनीषा जोशी बोहरा और मेरे साथ
1: स्वाति बंसाली को आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आपका आज का दिन अच्छा ही नहीं गुजरे, बहुत अच्छा करते ही ये शुभकामना नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम की ओर से। तो दीजिए अनुमति,
0: नमस्कार।

ये था मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस अंक की शुरुआत कर रहे हैं गवरी देवी द्वारा गाई हुई इस लोक रचना के साथ।

चंपालाल घारू को अभी आप सुन रहे थे। लोक संगीत कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये अंतिम रचना जयफू खान लंगा साथियों की आवाज़ों में।

इस रचना के साथ ही लोक संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली रचना बेगम अख्तर।

शुभ्रा गुहा की आवाज़ में ये दादरा भी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी जोधपुर से चल रहा है कार्यक्रम सुगम संगीत, और आइए इसमें सुनते हैं अब अगली रचना, जिसे गाया है शुभा मुद्गल ने।

ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस अंक का ये पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म है सौदागर।

आकाशवाणी जोधपुर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ये गीत आप सुन रहे हैं दीवाना फिल्म से, कुमार सानू की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

हम आपके कॉर्नस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे देव कोहली ने और संगीतबद्ध किया राम लक्ष्मण ने। श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हरिहरन और के एस चित्रा की आवाज़ों में। फिल्म है जिद्दी।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इंदिवर के बोल और एमएम करीम के संगीत से सजा ये गीत हमने लिया है क्रिमिनल फिल्म से। इसे आवाज़ दी है कुमार सानू ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर से। अगला गीत हमने लिया है माचिस फिल्म से। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत से सजाया है विशाल ने, आवाज़ दी है हरिहरन और सुरेश वाडेकर ने।

अभी हमने हरिहरन सुरेश वाडेकर के स्वरों में सुना गुलजार का लिखा और विशाल के संगीत से सजा गीत जो माचिस मूवी से था। और आइए सुनते हैं अगला गीत बरसात मूवी से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी हमने कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में समीर का लिखा गीत सुना, जिसे संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम था बरसात। आइए अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और यशुदास की आवाज़ में, जिसे महबूब ने लिखा है और एआर रहमान के संगीत से सजा ये गीत दौड़ मूवी से है। तो आइए सुने ये अगला गीत।

अभी हमने सुना आशा भोंसले और यशुदास की आवाज़ में दौड़ मूवी का गीत, जिसे लिखा महबूब ने और संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। आइए सुने अगला गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में, जिसे लिखा है आनंद राज आनंद ने और कंपोज किया है, यानी संगीत भी है आनंद राज आनंद का। तो आइए सुने ये अगला गीत। फिल्म का नाम है मेजर साहब।

अभी हमने सुना मेजर साहब फिल्म से गीत, जिसे लिखा था आनंदराज आनंद ने और संगीतबद्ध भी किया आनंदराज आनंद ने। स्वर थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। आइए सुने अगला गीत, दिल तो पागल है, फिल्म से।

आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हमने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वरों में, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा और संगीतबद्ध किया उत्तम सिंह ने। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम

क्षमा कीजिए, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत, और लोक संगीत में आज का पहला लोक रंग, आइए सुने ऋचा शर्मा के स्वरों में।

कार्यक्रम लोक संगीत में हमने पहला लोक रंग सुना ऋचा शर्मा के स्वरों में, और आइए अगला लोकगीत सुनते हैं तुलसा राम की आवाज़ में।

कार्यक्रम लोक संगीत में अभी हमने ये लोक रंग सुना जमात खान की आवाज़ में। आइए सुने अगला गीत, लोक गीत कुसुम कछवाहा पार्टी से।

0: आज के लोक संगीत के लिए हमने अभी अंतिम रचना सुनी आज के लिए कुसुम कछवाहा पार्टी से। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला गीत आइए सुने अलका याग्निक के स्वरों में।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी हमने सुना जावेद अख्तर का लिखा और राजू सिंह के संगीत से सजा गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। आइए सुने अगला गीत,

कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत, और आज के सुगम संगीत का अंतिम गीत आइए सुने कैलाश खेर के शब्दों में, स्वरों में।

0: आज के लोक संगीत कार्यक्रम की अंतिम रचना अभी हमने सुनी कैलाश खैर के स्वरों में। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है, भविष्य में किसी भी तरह

0: की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा ईवी वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
0: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसु राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आपानी कोशिश आई जरा कि भाई आपा खेती बाड़ी रे साथे साथे पशुपालन जी को काम काज है वो भी आपा करिया करा और खास तौर से आपा जी का भी पशु पाला तो उन महीने ज्यादा से ज्यादा पशु जी का है दूध देवे तो जिनसु कही हुआ के अपने मुनाफो भी अच्छो हुआ करे। आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई दुधारू पशुरा महीने जरमरी पौधारी विषकता रा कई दुष्प

प्रभाव है और उन्होंने जो उपचार है वो आप किन तरह से कर सका। तो सगला सु पहला तो बात आवे कि भाई ओ जर्मरी पौधो वे कहीं और इन महीने किन तरह से विषाक्तता इन महीने हुआ करे। जर्मरी जी को है वो एक बहुवर्षीय झाड़ी नुमा जहरीलो पादप हुआ करे। खासतौर से बात करा विदेशों रो महीने सजावटी पौधा रे रूप रे महीने वो भारत आए गो मान लो कई ठोट जी का है सजावट रूप में ए जी का पौधा जी का है ए आप रे।

जनवरी विषाक्त रहे, महीने सामान्य तेजी का पशु है, भूखरी कमी हो जावाने, शरीर महीने कमजोरी आ जा, कब्जी हो जा, और कई दान तो कहीं है कब्जी रे बाद रे महीने पशुआ ने दस्त भी हो जाया करे। त्वचा माते आप बात करा तो खुजली ऊनी लाग जा, बाल जी का है पशुआरा वे झड़ना लाग जा, साथे साथे पशुआरा महीने सूजन भी आ जा, कटी फपोला भी बन जा, कटी घाव आ जा, और कई कई पशुआरी जी की चमड़ी है आ भी उतरनी हरू हो जाया करे। तो ए लक्षण है खास तौर से इन रोग रा। इन तरह लक्षण मैंने प्रमुख रूप से बाल रहित और हल्का रंगरी जी की त्वचा जी आप बात करा, कान है, मुंडो चेहरो है, इन माते ज्यादा मिलिया करे। और कई दान तो आप बात करा पशुआ मैंने अंधापन भी आ जाया करे। हमें बात आवे कि भाई इन रोग रो आप उपचार जी को है वो आप किन तरह से कर सका। जरमरी विषाक्तता रे प्रभाव ने कम करने वास्ते पशु ने एक्टिवेटेड चारकोल 5 लीटर 10 ग्राम पिलाना चाहिए। दस्तावर रे वास्ते बोविलक्स पाउडर और तरल जी को पैराफिन पिलाना चाहिए, और बीमार पशुओं ने लिवर टॉनिक भी पिलाना चाहिए, और त्वचा माते एंटीसेप्टिक क्रीम जी की है वह आपने लगानी चाहिए। गवा ने भरने वास्ते रोजाना 2 दान जी को है वो पोटेशियम परमैंगनेट गोल्ड जी को है, जिन्हें आप कीटाणु नाशक किया करा, और हाथे हाथे जी का हर्बल जी का मरहम है वह भी आपने लगाना चाहिए। और बीमार पशुओं ने बारे चरने वास्ते आपने बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहिए, और बाड़े में जी आपने बढ़िया चारो बीजो है पानी पशुओं ने पावना चाहिए, और ताजो पानी आप पावा, और साथे साथे अच्छो जी को चारो है वो पशु ने उपलब्ध कराना चाहिए। और बीमारी रे वे पशु ने उन वक्त हरो चारो आपने पशु ने नहीं देवनो चाहिए, वो विशेष तौर से आपने ध्यान रखना जरूरी है। और पशुरी जी की दवाएं बीजी आप देवा तो अपन जी का पशु चिकित्सक है वनु आपने संपर्क करना चाहिए, और वाणी देख रेख रही आपने पशुरी जी को उपचार है वो आपने करना चाहिए। इवन एक आप खुद ही डॉक्टर बन जावा और आप इलाज करा। और मान लो कई दान कहीं वे के अपना जी का पशु है वाने सीधी धूप अपने बचान रखना बहुत जरूरी है, छाया में रखना जरूरी है, अंधेरे कमरे में भी रखना जरूरी है, ताकि जो को फोटो सेंसिटाइजेशन जो वे विनु पशु बच सके। और मान लो ज्यादा विषाक्तता पशु रमाइने अपन और ज्यादा दिखने लाग जा तो अपने पशु चिकित्सक डॉक्टर साहब ने अपने बुलावना चाहिए, और बीमार पशु वे उन्हें शरीर मक्खी है मच्छर ने भगवान वास्ते भी अपने जिका अपने भात भातरा कीट रोधी दवा जी की है उन अपने स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई दुधारू पशुआ रमाइने जरमरी पौधारी जी की विषाक्तता है उनरा कई दुष्प्रभाव पड़िया करे और किन तरह से आप उपचार कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सिख दिराओ राम राम।

किसान भैया अपा जानकारी ले रहा था कि भाई कई दान जिका अपना जिका दुधारू पशु है वे जरमरी जिका पौधा है फल है वे खा लिया करे तो बहुत दुष्प्रभाव भी पड़िया करे। हमें बात आवे कि भाई विषाक्तता का कई लक्षण होया करे। पशुओं रे महीने जरमरी विषाक्तता रो कारण लेंटाडीन मुख्यतः टाइप ए री उपस्थिति होया करे। विषाक्त पदार्थ कई करे संपूर्ण जिकी आहार नाल होया करे जिन्हें आप छोटी आंत क्या करा उनरे महीने अवशोषित होया करे। ए विषाक्त पदार्थ पशुओं रे महीने यकृत विषाक्तता फोटो सेंसिटाइजेशन और पीलिया रो कारण बन जाया करे। जरमरी रे सेवन रे बाद रे महीने फोटो सेंसिटाइजेशन की शुरुआत जिकी है आ एक दो दिन रे महीने होया करे और सूरज रे प्रकाश रे महीने पशुओं ने कहीं वे बेचैनी हुआ करे।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज और 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका। प्रस्तुत है कार्यक्रम गणगौर।

0: परिवार के अनेक चेहरे पर एक जादुई दर्पण हुआ करे। अपना लोगारो प्यार देख परा अतीत चिको है, वर्तमान और भविष्य तीनों एक सागे दर्पण में दिखाई दिया करे। तो परिवार से निर्मित जिकी एक छोटी सी दुनिया है, बिरो कोई जवाब नहीं है, वह लाजवाब है। आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर सुनने वाली सलोनी सख्या ने आप रे रेडियो संगनी आराधना जोशी रा गणे हे थरकसु राम राम। और आज अपने सागे कार्यक्रम में है दूसरी सखी कोमल राठौड़। तो आपने भी कोमल घणे मानसु राम राम।
1: बिल्कुल, आपने भी और गणगौर कार्यक्रम सुनने वाली सगली प्यारी प्यारी सखियां।

0: तो बिल्कुल लड़कियां करे कि आज को असली परिवार उन्हीं ने कहवे जटे चूल्हा री तकरार सू बत्ती उन चूल्हा माते बनन वाली बाजरा री रोटी री मिठास है जकी ज्यादा हुए। और आप ओ परिवार है वो अधूरो है, क्योंकि है ना परिवार में अगर सिर्फ रेवन आलो समूह नहीं है और बल्कि बा कड़ी नहीं है जटे सुख दुख में साथ देवन वाला साथे चाले, तो वो परिवार है जो को अधूरो मानी जाया करे। इनरे वास्ते आप समूह है मेरे, वो एक दूसरा रे साथे सुख दुख बांटो जदि आपनो परिवार है वो पूरो होवेला।
1: बिल्कुल, केवन की अपनो परिवार है ना जो एक पेड़ है, बिरकई शाखाएं हैं जिकी भले भी अलग अलग दिशा में बढ़ रही है, लेकिन जिकी जड़ें जिकी है कोमल भे जमीन में ही रहे, बे सागे जुड़ोड़ी रहे। और
0: बिल्कुल
1: जब बे जड़ें जिकी सागे जुड़ोड़ी रहे, तो भले शाखाएं कोई भी दिशा में जाओ, वो जो पेड़ है वो हरे भरे ही रहेला। इन्हीं तरह अपनो परिवार भी जो है हमेशा हरे भरे रहे करे। और परिवार एक वो केवन स्थान है जठे मन जो है एक दूसरे रे संपर्क में है जिका बनोड़ा रहे। और आओ जो विचार है वो बुद्ध रो विचार है। और एक वो सुंदर विचार है कि परिवार प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। मतलब जिसको जाड़ सटाइना है बाणो विचार है कि परिवार जो है सबसे उत्कृष्ट और बेहतरीन तस्वीर बनाए रखे भगवान।
0: बिल्कुल। और जको साथ चाले बोई साथ ही हुए, पर सुख दुख में बराबर बांटे बोई सच्चो परिवार होया करे। और जका आंगना रे मायने बुजुर्गा री सीख बच्चा री मुस्कान हुए बटे साक्षात भगवान रो वास मानी जा करे। और ओ भी आपस सुना ही हाँ आराधना जी की दुनिया में जको सबसे अमीर है वो तिजोरी भी खुशी रे बराबर नहीं कर सके जटे परिवार साथ बैठ रहे चाय पीवन रे मायने मिलया करे।
1: बिल्कुल केवन की जो परिवार है वो कोई मामूली चीज नहीं है, परिवार सब कुछ है। और जो परिवार में सब कुछ है, बड़ा प्रेम भी जरूरी है, बड़ा सहयोग भी जरूरी है, समर्पण की भावना भी जरूरी है, बड़ा तकरार भी जरूरी है। क्योंकि केवल केवन की मीठो मीठो खाणो तो जीवन चल नहीं है, तो थोड़ा सा नमकीन स्वाद भी होना जरूरी है। तो अगर छोटी मोटी तकरारियाँ हो रही है तो कोई दिक्कत को नहीं, अगर छोटी मोटी तकरारियाँ हो रही तो बीमे में अपना जीवन रोज को आनंद ले सका। एक आंख हंसया करे और एक आंख है जिकी रोया करे। तो उन्हीं तरह छोटी मोटी तकरारें भी होनी चाहिए, पर वे तकरारें हमेशा याद रखनी, बड़ी नहीं हो जाए, समय रहते भी तकरारें ने खत्म कर देवा। तो आज की तकरार भी है, आप बड़ा एक सुंदर है दृश्य है जिको जीवन में बना लिया करे।
0: बिल्कुल। और बिना कोई स्वार्थ रो प्रेम सिर्फ अपनो परिवार से ही मिल सके, आत्मविश्वास और भरोसा रो साथ ही अपनो परिवार हुए और केड़ी भी परिस्थिति हो चाहे परिवार है जो को हमेशा अपने साथ रहे, अपने सुरक्षा देवे, अपने

0: हिम्मत देवे, आपणे चरित्र निर्माण करे, और सही गलत रो जको भेद है वो आपणे सिखावे, एक दूसरा रो सम्मान, ईमानदारी और जिम्मेदारी लेवे। और सबसे बड़ी बात है आराधना जी की, आपणे जकी भी पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज है, आवन वाला बच्चा ने सिखावे और वाने साथ लेर चले।
1: और देखो अपन जगह घर बुजुर्ग है यहाँ रखना, आप जब बैठा तो गूगल री आवश्यकता नहीं है, अपन ने बड़ सर्च को नहीं करना कि आ काम जो है कि यहाँ से बे अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बन कर जब बैठा नहीं तो बे अपने आप ही अपन सगली चीज़ें हैं जगह बता दे, पुराने समय में किस तरह रो भोजन बनतो, किन तरह रो वातावरण होया करतो, या जब भी अपन खन कोई समस्या आवे अपा दौड़ पर बनखने जा रहे बैठा तो बे माथे पर एक मैंने प्यार रो स्पर्श देवे, और भी स्पर्श हुई अपने आधे हूँ ज़्यादा समस्या है जी खत्म हो जाए। और जब बे यहाँ बोले नहीं कि कोई बात को नहीं, समय है जो को बदल जावे लो, धीरज रखो अपने आप, और जो को अंधेरो है वो दूर हो जावे लो। तो जो का मीठा मीठा बोल है एक थेरेपी रो काम करे करे। तो जो को आदमी परिवार में रहे बिना कदी कर मुसीबत का सामना भी करना पड़े कोमल, तो आप मान चलो कि वो मानसिक अवसाद है जो को ग्रसित नहीं हुए, वे समस्याएं एक समय बाद खत्म हो जावे। इन वास्ते क्या करे कि परिवार में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बैठा कहीं सुख दुख री जो की भावनाएं हैं जो की बड़े साझा कर सका अपने, कभी नहीं बारे रे लोगों की जरूरत नहीं पड़े। जी हाँ आजकल आप देखा कि युवा पीढ़ी जो की है मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा ग्रसित है, और बने कई तरह रे जो की दवाइयाँ हैं बने इस्तेमाल करना पड़े। तो अगर परिवार में जब लोग खाना बैठा आप बातें सा बतावा एक दूसरे ने, तो बहुत सी दवाइयाँ जो की है वे आपने लेने जरूरत नहीं पड़े। बाणी जी की बोली जी की है वह भी अपने आप में केवल एक औषधि रो काम करे करे।

आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से कार्यक्रम गणगौर। आज बात करें हाँ परिवार रिश्ता री और बाने नींव में जिकी हुए मिठास समर्पण सहयोग और समझ री। तो आज विशेष कार्यक्रम जिको है आपा एक केवल खास रिश्ता ने समर्पित करने लेना है। और रिश्तों कोई भी हो वो हमेशा खास हुआ करे, चाहे वो सास बहू रो रिश्तो हो या पति पत्नी रो हो या माँ बहन रहो माता पिता रहो या सास ससुर रहो। हर रिश्ते में केवल एक मिठास होनी जरूरी है, समर्पण की भावना होनी जरूरी है, तो ही वो रिश्तो जिको है आगे बढ़ सके। कि अगर एक पौधो जद लगावा तो वो छोटो सो है, बीम खूब सारो पानी देना पड़े, खाद देना पड़े, धूप देनी पड़े, समय समय पर बिरी के वे की देखभाल करा तो ही वो पौधो जिको है पनपे और एक समय बाद वो वृक्ष रूप में ले बड़ो होया करे। तो इनी तरह अपना रिश्ता भी यही होया करे। एक छोटो सो शिशु जद जन्मे तो वो आप पहली जान पहचान माता पिता से करे, फिर धीरे धीरे रिश्ता के परिवार कई रिश्ता जिका है जुड़ जाया करे। तो जब रिश्ता की बात कर रहा तो एक बहुत ही संवेदनशील और आत्मीय एक रिश्तो यह करे सास बहुरो, जो को एक कुदरत रो रिश्तो यह करे। और इन्हें ये रिश्ते ने आपा

0: खुद जी को है सहज परा आगे बढ़ावा। और क्या करे कि सास बहू जी को है वो माँ और बेटी रूप में भी आपा इन्हें अपनावा तो ज्यादा सुंदर लागे। और जब माँ बेटी री बात करे हाँ, तो आज आपने आकाशवाणी जोधपुर रमाई सोशल मीडिया पर लाखां दिल ने जीतन आला बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी जोड़ी है जिकी है जिकन आपा कहने की मारवाड़ी बुआ जी और बहु रानी रे नाम से जाना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बहुत सुंदर सुंदर वीडियो जिका बनाया कर है। तो आज आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में शोभा मुत्था जी आप रोघणे मान सुस्वागत, दिव्यांशी जी आप रोघणे मान सुस्वागत।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद ऐसा आपने बहुत बहुत प्रेम बहुत बहुत आभार आकाशवाणी जोधपुर रो मन बुलावन वास्ते और तो प्रेम देवन वास्ते।
0: बिल्कुल देखो आपने हमेशा सोशल मीडिया पर लोग है जिका आप वीडियो देखे लोग आपने सुने और आपरी बहुत सारी बातें जिकी है समझे और बाने अपनावे। आज आकाशवाणी रेडियो रे द्वारा आपने लोग है जिका सुनेला तो सबसे पहला शुरुआत करा आपने एक सुंदर से सफर री कि वो कौन सो पल हो जिके समय आपने यहाँ लाग्यो कि आपने या सोशल मीडिया पर मतलब एक वीडियो बनाना चाहिए सा कंटेंट बनाना चाहिए कि लोग जिका है बिसो जुड़े और एक सकारात्मक भाव जिका है लोगा तक पहुंचे।
2: बिल्कुल सा मैं जब वीडियो बनावनी शुरू करी तो मैं आपरे परिवार वास्ते बनावता आपस में मिलजुल ने बनावता वीडियो बनाने में उन्हें बहुत खुशी मिलती। धीरे धीरे उन वीडियो में और महसूस करियो कि लोग उन्हें जुड़ रिया है आपकी कहानियों मोने जोड़ रिया है कि मोरे परिवार में भी एडो ही जुए जरा आप वीडियो बना रहे हो तो वो देखने वो महसूस करने मोने और महसूस हुए कि मोने इन वास्ते अग्रसर होना चाहिए एडा प्रेम वाला वीडियो मोने बनावना चाहिए। इन वास्ते आ जर्नी में शुरू करी पहले प्रतीक जी शुरू करी उन्हें पछे माता जी शुरू करी हमारा उन पछे वे मने भी जोड़ दियो।
0: बिल्कुल
2: और एक छवि मने दी के आ बहुरानी भी एक छवि बनाई मारी बुआ जी मारवाड़ी री छवि बनाई वे तो प्रतीक जी मर वास्ते बहुत कुछ करियो है और परिवार रो इच काम वे कि आदमी एकलो आगे नहीं बढ़े आपरे परिवार ने सागे लेने चाले।
0: तो सुभा जी आप इन बारे में कहीं कहना चाहोला?
1: मैं आ कहनी चाहूंगा कि जिकी की मैं चीज अनुभूत करी क्योंकि इन हटने तो पे बात भी नहीं कर सको जिन टाइम मैं एक बहू ही और मारा सासुर साथ जड़ा रिलेशन हा वे जिका मैं महसूस करिया और उन्हें बाद में जिन टाइम मैं सास बनी तो सबसे महत्वपूर्ण जिकी चीज है वह है प्रेम कि अपरो आधार इज प्रेम है। अगर कोई भी बात ने पे प्रेम हो थोड़े से नम्रताओं करो तो बात और उजावे जिको घर परिवार है वो प्रेम हो अपे सीख सको ना कि डांट हो। जैसे कि मैं कुछ चीजों हमारी लाइफ में अनुभूत करी कि मैं कटी कटी हर्ट हो जाती तो मारी आ कोशिश रहती कि कदी दिव्यांशी रे साथे आ चीज नहीं हुए तो मैं वह कोशिश करी कि जो चीज मने कदी गलत लगी या मने ठेस पहुंचाई तो मारी वजह इन्हें कदी ठेस नहीं पहुंचे तो उन्हें आ नहीं है कि वे गलत था या मैं सही हूं लेकिन मेरे साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूरी है।
0: बिल्कुल जी हाँ आज रो जो समय है भी मैं काफी बदलाव आ गयो मतलब अब जिका रिश्ता जिका है थोड़ी अलग रूप ले लियो क्योंकि समय जिको है बदल गयो और समय रे सागे चालनो आज रो के बनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
3: बिल्कुल और देखो शोभा जी दिव्यांशी जी आमतौर में आप कही देखा कि समाज रे मायने सास बहु रा रिश्ता ने हमेशा तकरार सु जोड़ देखे जावे तो आप दोनों मिलर ई रूढ़िवादी सोच ने बदलिया हो और जद आप आस पड़ोस में रिश्तेदार ने आपरी जकी असल जिंदगी है विने एक साथ इतना खुश देखे तो आप समाज सु केड़ी प्रतिक्रिया आपने मिली।
1: मैं आ कहनी चाहू कि एक लंबे समय तक अपे जी ने साथ रहो जैसे कि महाराज जी का सासू जी है उन्हें जी की सास में होती तो वे बहुत ज्यादा सख्त होती तो एक लॉन्ग पीरियड तक उन्हें साथ रहने वे भी वेड़ो एक रूप ले लिया करे इनमें किन्हीं भी गलती नहीं है लेकिन कही है कि धीरे धीरे अगर अपे अपोरी सोच बदलो तो मने वो लगे कि मैं आ सोच बदलने आवन वाली पीढ़ी ने कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐडो कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिनमें कोई तरह की गलती नहीं है सब में हुए लेकिन थोड़ो सुधार अपो में करो थोड़ो आवनवाड़ी में करो तो परिवर्तन तो निश्चित है। मेन आधार जी को है वो प्रेम है। गुस्से हूँ डांट हूँ तो परिवार बिखरिया करे लेकिन प्रेम हूँ आप चाहो जिन्हें जोड़ सको एक छोटी सी बात एक छोटी सी लाइन अगर आप प्रेम में बोलो तो लंबी लंबी दूरियां भी खत्म हो जाए।
3: बिल्कुल दूरियां तो खत्म हो ही है लेकिन जिद थे एड़ा कंटेंट तैयार करो हो तो विन टाइम आप कौन सी खास बात तारो ध्यान रखिया करो।
1: खास बात आई जाए कि इन मोहने मैं कुछ बदलाव कर दू मैं

0: अड़ो हूँ या मारा घर रहा है नियम है, इनमें तो परिवर्तन होना ही नहीं चीज है, बस जी को मैं कह दियो फाइनल है, आ चीज नहीं होनी चीज है, थोड़ा आगले रे भी सुनो,
1: बिल्कुल
0: थोड़ी बात अपोरी रहे थोड़ी आगले रे भी रहे तो सुधार संभव है। और मैं तो एक ही चीज महसूस करी कि अगर मैं इन्हें प्रेम देऊंगा पहल अपो न करनी पड़े, मैं बड़ी हूँ मैं चाहूं जो वे और चीज सही नहीं है तो पहल अपे करोला इन्हें प्रेम देवला तो वह अपने आप जी की है आ बहु रानी आ मने उन्हु कई गुणा ज्यादा प्रेम करेला। और मैं कई बार महसूस करियो कि जी को मैं मारी मारी गोद में सोने जी को अनुभूत करती प्रेम, वो अगर मैं कभी थकी मांदी इन गोदी में सूझ ना मारे माथे में हाथ फेरे तो बॉटम ऑफ द हार्ट मने वो रो प्रेम महसूस हुए। लेकिन बदलाव दो ही तरफ जरूरी है, एक तरफ आप बदलाव कुछ भी नहीं कर सके।
1: बिल्कुल आप रहो आपसी प्रेम ही आपने आज अठे ले रही है।

0: बिल्कुल जी, अभी आप बहुत सुंदर बात बोले कि बदलाव वास्ते दोनों पक्ष ने मतलब बदलना हुआ, केवल एक पक्ष है जिसको नहीं बदला। तो दिव्यांश जी, जद आप रसासु जी, आप रसा गए एकदम
1: जी
0: मार और रूप ज्या
1: बिल्कुल,
0: राख है, तो आज रो समय देखते हैं आपने खुद ने क्या लगे।
1: मैं खुद ने बहुत सौभाग्यशाली मानू सा, सच्ची बात आ है, क्योंकि ऐड़े समय में जटे सास बहू ने बहुत टॉक्सिक बना जो है,
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ
1: बहुत टीवी सीरियल वाला उन्हें यू कर जो है कि
0: बिल्कुल।
1: भाई और तो बहुत खराब रिश्ता है, पर ऐडो नहीं है, और रिश्तो बहुत प्योर है, बहुत पावन है और बहुत खूबसूरत है। इनमें चाहिए प्रेम, इनमें चाहिए सम्मान, इनमें चाहिए समर्पण। अगर
0: बिल्कुल।
1: आप पूर्ण रूप से अगले ने स्वीकार कर लिया हो, वह सास कोनी है, वह थोड़ी माँ है,
0: बिल्कुल।
1: उन्हें था सास बनाना, यू क्या सास तो यूज वे सास, वो नहीं वे थोड़ी माँ भी तो थोने हाको करती नहीं, पर आ अगर थोने हाको कर रही है तो थोने बुरो नहीं मानना है और
0: बिल्कुल
1: थोने भले
0: दिव्यांश जी,
1: वास्ते
0: देखो
1: कर
0: आप
1: रही
0: रो
1: है।
0: गड़ो जी को है भर रहे हो और आप बहुत कहते उनके इमोशनल हो रही हो, तो इससे ही पता चले कि आप दोनारी जिकी
1: जी
0: जोड़ी जिकी है परफेक्ट है, और आप दोनों में केवल दिखावटी प्रेम को नहीं है, आप रे आंखें में झलक रहे हैं, आप रे आवाज में झलक रहे हैं, और आज इन मौके पर आई के वाला कि आप रे जिसे जोड़िया संसार में हजारों और लाखों में हो जाए, तो सास बहू रो जी को केवन रिश्तो,
1: बहुत
0: और
1: खूबसूरत
0: सास
1: हो
0: बहू हट
1: जाला,
0: परा
1: बहुत
0: माँ बेटी रो रूप ले ले वाला,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: शायद हो
1: बात,
0: सके आने वाले समय में वो हो भी सके,
1: और हो
0: संभव
1: रही
0: भी
1: हो
0: है,
1: है,
0: और वो हो रही
1: हो
0: है
1: रही हो
0: समाज में।
1: यो।
0: कि आजकल जी अभी आप बात करी कि रिश्ता बहुत संवेदनशील है, तो आप अपने सासू जी ने केवल सासू माँ नहीं समझ रहे हो, आप एक
1: नहीं
0: मित्र भी समझ रहे हो।
1: बिल्कुल, मित्रता और मित्र में मर्यादा होनी बहुत जरूरी है। और मित्रता का मतलब और नहीं है कि आप माथे ही चढ़ जाओ, वो भी नहीं करना,
0: बिल्कुल सही।
1: उनमें छेजे सम्मान, सम्मान और मर्यादा रे बिना कोई रिश्तो नहीं जीवित रह सके। प्रेम पूरो है।

0: प्रेम में कमी नहीं है, पर आपने अपनी मर्यादा रो ध्यान रखनो है कि वह आपू मोटा है, आपने नैनो में उन वास्ते प्रेम होना चाहिए और सम्मान री दृष्टि होनी चाहिए। मारे जीवन में ओज में सीखियो कि मैंने जिको मैं अपने परिवार में सीखने आई उन सवायो सीखियो इन घर में,
1: बिल्कुल
0: मैंने की नहीं आतो की काम नहीं आतो, पर आज की मैं इन कुर्सी माते बैठी हूँ तो इन परिवार री वजह हूँ बैठी हूँ। ए मैंने इतो समझायो इतो सिखायो, मारी जी की नींव शुरू हुई नहीं, आपको क्या हो कि टाबर ने बचपन में गुट्टी पिलाई जावे, मन बचपन में नहीं पिलाएगी, मैंने हाथ से पिलाएगी ये गुट्टी। तो
1: शोभा जी परिवार में केवल एक सास बहू रिश्तो नहीं वे, मैं अलावा भी बहुत सारा रिश्ता वे जिका मैं अपने संस्कार मूल्य जिका हुए अपन आत्मविश्वास है जिका दिया करे, जी हाँ माता पिता रो रिश्तो यो, भाई बहन रो यो, दादा दादी, नाना नानी के वहाँ, मामा बुआ भतीजा, ए जितना भी रिश्ता है ए अपारे व्यक्तित्व में मतलब कितना महत्व रखे बिने निखारण वास्ते।
2: आप रो सवाल बहुत अच्छो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन मैंने मैं एक बच्चे रे पर्सपेक्टिव सोचू तो मैं आ कहूंगा कि जैसे घर में एक बच्चो है तो वो दादा दादी चाचा चाची और आपरा मम्मी पापा यो ने सबो ने जिन टाइम वो रोज निरंतर देख रहे है तो काफी चीजों एडी है कि बच्चे ने सिखाने जरूरत नहीं वे उन बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जी की है परिवार बीच में हो जावे, उन मोने आत्मविश्वास है, प्रेम है, रेस्पेक्ट है, आ सब चीज वो बच्चों किन तरीके उन्हें माता पिता दादा दादी रे साथ बिहेव कर रहा है या चाचा चाची आप रे बड़े भाई और भाभी रे साथ कीकर बिहेव कर रहा है, उन्हें जिका पेरेंट्स है वे आप रे छोटे भाई और उन्हीं बहू रे साथ कीकर हुए रो जिको आपसी व्यवहार है और सब वो बच्चों उन परिवार में रहने सीखे, आई उन्हीं प्रारंभिक शिक्षा है और अपे एक नए बच्चे रे थ्रू अपे भविष्य रो निर्माण कर रहे हूँ। तो बच्चे ने अपन ज्यादा सिखाने जरूरत नहीं है, इन बीच में इन एनवायरमेंट में बच्चों स्वतः काफी कुछ सीख जावे।
3: बिल्कुल, और देखो आज क्या करे ना कि जटे चूल्हो बड़े बटे धुआं तो निकले ही है, परिवार साथ रही बटे थोड़ा थोड़ा जो को मतभेद हुआ करे वो हो जाए करे, पर प्यार रहना जरूरी है। तो आज रा टाइम में छोटा मोटा मतभेद जगह हो जावे परिवार रे मायने, और जब परिवार में मतभेद हुए तो विन टाइम आप है जो को धीरज सु या प्यार सु बने किया सुलझाया करो।
2: ऐडी बात है कि पहली बात तो कि जीवन में कुछ ऐडा नियम है जिका कि अपना होना नहीं पड़े, वे शुरू मोरे साथे घर गृहस्थी रे साथे अपने आप मोरे बच्चों रे तो खैर जेहन में आई गया, मैं लोग भी मोरे पेरेंट्स जी की चीज सीखी तो वे नियम है परिवार में, उन वजह मतभेद तो वे को नहीं, लेकिन कदी कदी मन भेद हो जाया करे तो उन मन भेद में सबसे पहली चीज आई रहे कि मैं खुद ने हटा दू उन जगह कि मैं कुछ हूँ, मैं उन हिसाब ही सोचू कि अगले री प्रतिक्रिया कई है, अगलो कई सोच रहे है, अगलो कई समझ रहे है, उन हिसाब उन्हें सोचने, और अगर मारे लेवल में तो मैं नहीं कर सकू तो बच्चों राजी का पिताजी है वही सलाह मशवरा कर और सिर्फ बच्चे री बात उन टाइम मान ली जावे कि वो ही कटे इन कटे सही है अपे सही नहीं हो तो थोड़ो बहुत उन्होंने सुधार संभव है, लेकिन जिन टाइम बच्चों शांत हो जा वो मन भेद थोड़ो कम हो जा शांति पूर्वक जिन टाइम अपन उन्हें समझावा तो एडी कोई बात ही नहीं है कि जी की परिवार में मतभेद या मनभेद वे बच्चा भी इतना आज्ञा करिए स्वतः हो जाया करे कि वे बड़ोरी रेस्पेक्ट करे और वेरी बात अपने आप मान ले।
3: तो कई बार देखो एडी छोटी छोटी बात हो जाए लोग जो को चुप रहे वे कि आप चुप रहे तो आ बात है जबकि सुधर जाए तो इस पर आपकी काई राय है चुप रहे
2: नहीं तो बिल्कुल सुधर। उन समय में जिन टाइम की अगर थोड़ी गर्मा गर्मी है तो थोड़ा सो संयम रख लेना जरूरी है, लेकिन चुप हो जाना मारे हिसाब सही नहीं है, जटे आपने बोलनो है, जटे तर्क देवनो है उठे जरूर आप बच्चों ने तर्क देवनो है और चुप रहना तो कोई सार को नहीं है तो कोई बदलाव संभव नहीं है।
1: तो दिव्यांशी जी आप बताओ कि कदी यहाँ भी हुई है कि घर में कोई बात हुई और विन समय आप एकदम मौन हो गया हो और आपने लगे कि अब मैं बात कौन करूं और कुछ इसी घटना घटी कि आप स्वतः ही वापस बोलन लग गया हो।
0: बिल्कुल
1: तो समस्या सुलझी।
0: बिल्कुल एडो कोई घर नहीं है जटे तू तू मैं नहीं वे,
1: बिल्कुल
0: हर घर में वे, पर चुप रहनो के भैया अब तो मैं नहीं बोलू इन बारे में बात ही नहीं करूंगा और सोल्यूशन नहीं है। अगर की बात हुए तो उन अगर कोई गर्मा गर्मी माँ जी को सही कह रही है कि अगर कोई गर्म बात चल रही उन टाइम बिल्कुल चुप रहनो, मौन धरनो, शांति धरनी, पच्छे बोलनो कि नहीं उस दिन माँ ऐसा नहीं हुआ था, मैं इस तरीके से भावना मेरी नहीं थी, इस तरीके से मैं आपके बारे में नहीं सोचती हूँ, आपसे जितना मैं प्रेम करती हूँ उतना कौन कर सकता है, या बताओ उनको। चुप रह के मन मुटाव करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। आप

0: अगले के मन को समझो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपको उनको अपनी वजह से इतना गुस्सा क्यों आया, अपने में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उनको इतना गुस्सा करना पड़ा। ये आत्म आंकलन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम रिलेशनशिप नहीं निभा सकते।
1: बिल्कुल मियाँ भी क्यों नहीं कि एक बहुत रिश्तों जो है बहुत छोटी सी बात है जो टूट जाया करे और छोटी सी गलत फहमियों से भी हम रिश्ता में कई तरह की दरार आ जाया करे तो विण समय अपा ने जहाँ अभी आप बतायो कि कोई रिश्तों यहाँ लगे कि टूट चुकियो है तो भी ने वापिस जोड़ने की शुरुआत अपा किया कर सका और रिश्ता टूटन का कई कारण यहाँ करे।
2: इन्होंने मैं सिर्फ एक ही बात कहनी चाहूँ कि या तो माफ कर दो बच्चा है तो या माफी मांग लो
1: जी।
2: तो झुकना ही सबसे बड़ी चीज है। अगर प्रेम है तो इनमें कोई छोटो बड़ो नहीं है, बाकी तो सारी बात बाद में हो जावेला। लेकिन जिन टाइम रिश्ते री बात आई कि रिश्तो टूट रहे है तो आप माफ कर दो और उन रिश्ते ने एक बार बचावनी पूरी कोशिश करो, बाकी सब बाद में हो जावेला। माफी मांग लो और माफ कर दो।
1: तो जी अभी आप बोले कि माफी मांग लेना चाहिए या माफी दे देनी है। कई बार यह है कि दो लोगों जिका रिश्ता हुआ चाहे वह ननंद भाभी रहा हो या सास बहू रहो कि जब आप रिश्ता में कोई भी छोटी सी बात हो जाया करे तो भी मैं तीसरो व्यक्ति जी को है इंटरफेयर करे करे या जब तीसरो व्यक्ति है भी मैं राय देवे तो आज की राय है बा कितनी उचित हुआ करे रिश्ते ने बचाने वास्ते सही हुए या फिर बन दो लोगों ने आपस में एक बार एकांत में छोड़ देना चाहिए।
2: हाँ बात दो ही तरफ सही है। अगर जो मीडिएटर है वो अगर अच्छा व्यक्ति है तो आपने जोड़ने की कोशिश करेला, लेकिन ऐडा लोग आजकल कम मिले और अगर वो जोड़ नहीं सके तो ऐडा लोगों दूरी बनावना ठीक रहे। अगर प्रेम है तो रिश्तों टूटने की संभावना है ही नहीं। आजकल तो सबसे बड़ो जरियो है मोबाइल। एक इन्होंने छोटी सी का प्रेम भरी पाती लिख दो, कुछ भी आप वॉइस नोट भेज दो तो सबसे बड़ो जरियो है कि आप उन्हें आप जो भी रिश्तों टूटियो है उन्हें मोबाइल के जरिए भी आप सुधार सको और मिल बैठने करने बैठने बात करियो रिश्ता सुलझे, न कि गुस्सो करियो या बात नहीं करियो दूरी बढ़ाई हूँ, इन मोने रिश्तों कदे नहीं सुधरेला।
3: बिल्कुल और अपना परिवार ने अपने जीवन रो सबसे मजबूत आधार मान्या करा। तो आज रा टाइम में आप सगला देख भी रही हाँ कि एकल परिवार रो जो चलन है वो बढ़तो जा रही है तो आपने काई लागे आज की संयुक्त परिवार या परंपरा है इन्हें बनायोड़ी राखनी समाज रे वास्ते कितनी जरूरी है
2: आजकल। और ज्वलंत मुद्दा है कि ज्यादातर लोग अकेला रहनी चाहे, लेकिन मैं जिन नजरियो सोचू क्योंकि मैं जी की वीडियोस बनाओ वे सास बहुरी वीडियोस है तो मैं आ कहनी चाहूँ कि जैसे काल ने दिव्यांश भी माँ बनेला और हर माँ आपरे बच्चे ने प्रेम करे और उन बच्चे ने आजकल अच्छी अच्छी शिक्षा अच्छी अच्छी क्लास वह ज्वाइन करावनी चाहे, लेकिन वह इन चीज ने क्यों भूल जावे कि जी की प्रारंभिक शिक्षा संयुक्त परिवार में मिले वह बच्चे ने कटे भी नहीं मिल सके, वो बच्चों परिवार बीच में रहने स्ट्रांग बनेला। तो मारी अगर आप बात समझ सको तो मैं आईज कहूँ कि अपोरो जी को बच्चों है वो फ्यूचर है और दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ये और सब और बीच में रहने बच्चों काफी कुछ सीख जाए और उन्हें अगर आप अच्छी शिक्षा देनी चाहो तो खुद में सुधार लाना जरूरी है। पहले खुद ही सुधर जाओ कि मोने बच्चे ने कई बनावनो है तो मने लगे कि इनमें परिवर्तन संभव है।
1: तो अपने बातचीत है जारी रहे ना आपने कोर्स सुना गीत

0: आज अपन संगे बहुत ही प्यारी सी एक जोड़ी है, सास बहुरी। तो जी कहा के बन सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध है और आप बाना वीडियो जी का काफी पसंद करो। और आज री भी बातचीत है जी की कठिन घड़ी अपने वास्ते सकारात्मक ऊर्जा लेने आई है। और आप बातचीत आप सुन रहे हो तो जरूर आपके जीवन में भी के बनी सकारात्मक है परिवर्तन लेने आवेली। तो शोभा जी आप बात करा आज री युवा पीढ़ी री की, आजकल जी को जमाने में अक्सर युवा जी के है, चाहे भी मैं लड़कियां हो या लड़का हो, आ एक बात सुना कि मारो जीवन है, मैं एंजॉय करूं, अबार नहीं करूं तो मैं कर करूं, क्योंकि वो जीवन जो को है बहुत छोटो है, मैं मारे पसंदू है जो को काम करना चाहूं, क्योंकि वो जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो मारो जीवन है, मैं एंजॉय करना चाहूं, वो जो को शब्द है वो कितो सार्थक है।
1: आज रे हिसाबू सोचो तो अगर माता पिता बच्चे ने प्रेम करे और चाहे कि उन्हें फ्रीडम मिले, आजकल रे पेरेंट्स भी आनी चाहे कि बच्चे ने बॉन्ड ने रखे, तो वो सही सोच रहे हो। लेकिन मर्यादा में रहने, माता पिता री देख रेख में रहने, अगर वो आगे बढ़े कि हाँ उन्हों जीवन है तू जी, लेकिन उन्होंने माता पिता री रजामंदी जरूरी है। कि यू नहीं कि माता पिता ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और आप रो जीवन जी रहे हो या गलत लाइन गलत ट्रैक पकड़ लिया तो वो गलत है। बाकी उन्हें पूरा अधिकार है कि वो आप रो जीवन जीवे, लेकिन स्वीकृति माता पिता री होनी जरूरी है। आप बात में कहनी चाहिए
0: जी हाँ, अभी आप बोले कि स्वीकृति होनी जरूरी है, पर बहुत तो जगह यहाँ भी देखा कि भाई माता पिता सागे रहना कौन चाहे, या घर में जगह बुजुर्ग है बिहार सागे भी नहीं रहना चाहे, और बाण आय करे कि भाई मैं आप लोगों सागे इतना नहीं रह सका, क्योंकि मानव खुदरो एक पर्सनल जीवन है, मानव खुद भी जीवन में एंजॉय करना चाहवा, तो कहीं अकेलो व्यक्ति जी को है वो आनंद ले सके आप जीवन रो।
1: बिल्कुल नहीं, अकेलो व्यक्ति कदे भी आनंद नहीं ले सके। और कुछ बात है कि आजकल का बच्चा झुकनी नहीं चाहे बिल्कुल भी, गुस्सेल है और कटे निकटी टीवी मोबाइल सीरियल्स इनो भी आजकल की जनरेशन में तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ियो है। लेकिन मैं तो आज देखी हूं कि मैं मारे घर रोज उदाहरण देऊं कि अगर पेरेंट्स चाहे तो आपरी समझदारियों आपरे अनुभव उन बच्चे ने ट्रैक माते ला सके, और प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। मारे घर में तो एड़ा बच्चा नहीं है, इन वास्ते मने के जी का ऑबिडियंट बच्चा नहीं है और मने अनुभव भी नहीं है। लेकिन मैं आई जाए कि मैं बहुत ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगायो, मैं दो ही पति पत्नी बच्चों ने भी फ्री कर दिया हा कि भाई जैसा तेरे को करना है वैसा कर, लेकिन मोरी नजर उन माते रहती। आज वो दिन है कि अबे बच्चा कटे भी जान नहीं बिगड़ सके, मैं कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया, हमेशा उन्हें भावना और कदर करी, उयो ने भी सुनिया तो कटे न कटे बच्चों ने भी सुनिया। और जिन टाइम रिश्तों इतो परिपक्व हो जावे, देखो ऐसी बात है कि माँ तो माईज रहेला, कि माँ रोज को दर्जो है वो कोई मिटा नहीं सके, लेकिन वह माँ जिन टाइम उन बच्चे री दोस्त बन जावे, पिता है तो वो पिता हीज रहेला। अगर वो पिता बनने खाली गुस्से वालो है या खाली वो टेरर है तो पचो में रिश्ते में मजेदारी नहीं है। लेकिन वे पिताजी जी का ही रहे, वे जिन टाइम दोस्त बनने उन्हें की समझावे तो बच्चे रे दिमाग में सहज ही बाजी की चीज है वह फिट बैठ जावे।
2: बिल्कुल। और कई बार तो बच्चा हो या कोई भी परिवार रो सदस्य ने अगर बहुत तनाव सु गिर जावे या कोई मानसिक बीमारी भी ने हो जावे, तो विन टेम माते जका सदस्य है या परिवार आला है वारो कियान सहारो बन सके, किया बे एक सुरक्षा कवच रिजिया काम कर सके वीर वास्ते।
1: इन्हें मोने तो मैं आ कहनी चाहूं कि आज की मानसिक बीमारी है इन्हें तो लोग स्वीकार ही नहीं करे। अपोरो एडो जी को कल्चर है कि उन्हें कह दे लागो तो

0: स्थिति हो गया है और चिड़चिड़ हो गया है, लेकिन उन्हें कोई मानसिक प्रॉब्लम है अस्वीकार नहीं करें, तो एडी टाइम का यह है कि आपने खुद री तरफ कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। इन कंडीशन में मोने उन्हें कोई अच्छे डॉक्टर ने दिखाओ कि नहीं सलाह लो, यूं नहीं कि तू हल्दी लगा ले या तू कुछ आंवले की फाकी ले ले, हर जगह अपोरो जिको है एडी चीजों नहीं चल रहे। तो जिन जगह एक्सपर्टीज री राय लेनी चाहिए तो जरूर अपने एक्सपर्ट नहीं दिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशी जी, क्या करे एक सच्ची कला जिकी हुए वाह है जिकी लोगारो मन है जिको जीत ले वे, या कटी सकारात्मक आप बदलाव देखा तो आप वाक्य सका कि ओ वाक्य में कलाकार है कि इरी कला सु लोग जिका है प्रेरित हो और जीवन है जिको संवार। तो आपरा जिका वीडियो है परिवार से जुड़ा होया करे, सास बहु पर भी है और मतलब रीति रिवाज परंपरा कई मतलब कंटेंट होया करे, तो अलग कंटेंट रहा अलग अलग आप वीडियो बनाओ, तो कभी यहाँ भी हुआ है आप रे सके कि आप कोई जगह गया हो और दौड़ पर और आपने आर किया है कि आपकी सास वो रिजगी जोड़ी है बहुत ही सुंदर है और आप वो फला वीडियो जब मैं देखियो तो बासु माने आप प्रेरणा मिली और माने जीवन में वो बदलाव हुयो।
2: बिल्कुल सा एडो बहुत बार हुए और उठे जू मैं कटे बारे गए और लोग आने मोने बोले कि आप लोग सच में ऐसे ही रहते हो क्या, अब दोनों तो सच में वैसे ही हो जैसे आप वीडियो में दिखते हो। तो हमको वो देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ मैं वेड़ा ही जो जेड़ा मैं दिखो और मोरे में वेड़ो इच प्रेम है।
1: बिल्कुल
2: कि मैं भी और चाहूँ कि हर घर में एडो प्रेम वे, हर सास बहू आपस में प्रेम हो रहे, सास बहु जरे आपस में प्रेम हो रहे वेला जरेज घर स्वर्ग बनेला, उन घर री उन्नति उन दिन निश्चित हुएला कि उन घर में प्रेम कितो है, उन घर में जी का टाबर वेला वे वो ही सीखेला कि अच्छा प्रेम है इसको कहते हैं क्या, कि मम्मी और मना दादी आपस में कितने प्रेम से रहते हैं, दादा मम्मी से इतना प्यार से बात करते हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। जैसे मेरे घर के अंदर है तो मेरी मेरे ससुर जी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरी माँ से सेकंड नंबर है, सबसे पहले मेरे डैडी है, फिर माँ आती है, फिर घर में सब जन है। तो जो प्रेम की बुनियाद है मेरा बच्चा आने वाले समय में जब सीखेगा तो ये सीखेगा कि जो वैल्यूज वो सीखेगा तो घर से सीखेगा। और जब हमको लोग कहते हैं ना कि आपके वीडियोस देख के अब हम भी सास बहू ऐसे ही रहते हैं, तो हमको बहुत खुशी मिलती है कि चलो एक घर और सुधरा है।
1: बिल्कुल सही बात,
2: क्योंकि सास दुश्मन नहीं है, सास आपकी माई है।
1: एक कहावत भी है कि जे अपना घर में बुजुर्ग किया करता कि सास तो मिट्टी रही है जिकी भी दोरी लगे, तो बिन भी यूं लगे कि भाई अच्छा असास है, जबकि बहुत सुंदर अगर भी इस सास ने एक बिंदी लगा दे तो वह सांस बन जाए।
2: बिल्कुल
1: कि सास इसी चीज है कि अपन एक सांस है जिकी बहुत अच्छी बन रही है और अपने सांस जब आवे तो अपना जीवन चल सके, तो अपने जिकी सासू माँ जिकी अपने जीवन में आवे तो जीवन ने सुंदर ही बनाया,
2: बहुत सुंदर।
3: तो शोभा जी, दिव्यांशी जी, आपसे और भी बातें करा ला, पहले आपने सुना हुआ एक प्यारो सो गीत।

0: तो स्वागत है एक बार फिर सु कार्यक्रम गणगौर वे मायने। और किया करे नी कि जो भी सासु काम करिया करे तो बहू भी विने देख कर ही वेड़ो ही काम है जो को सीखिया करे, क्योंकि सास री आदत हुए काम करण का तरीका जका वे बे बहू है वन देख देख कर सीखे। तो इनके वास्ते कहे कि सासू जी ने अच्छो अच्छो अच्छी अच्छी चीजें है जो कि आपकी बहू ने सीखानी चीजें, ताकि देख नई नई चीजें हैं जो कि एक बहू है जो कि सीख सके। तो आपसु देखो कई चीजें जान भी रही आप बता भी रही हो, और शुरू से एक चीज और नोटिस कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरा की तारीफ करता जा रहे हो करता जा रहे हो तो और सही भी है। तो आप दोनों ने मैं वो पूछनी चाहूँ, सब पहली दिव्यांशी जी आप बताओ कि सबसे चौखी आदत आपरी सासू माँ में आपने काई लागे?
1: मारी सासू माँ मोतियोरी डोर है और मैं घरा हैंग मोती हूँ। वह हर मोती ने कोशिश करे कि मैं बांध ने राखू हैंग आपस में जुड़ियोड़ा रहे, आ खुदरो बरखस्त प्रयास करे कि कोई भी बिखरे नहीं, हैंग सागे मिलने रहो कटे मनमुटा वह अड़ो कोई घर छूटियो नहीं। मैं अपने पहले भी कहो पर और पूरा प्रयास रहे कि मैं आखिरी बार तक प्रयास करूं। और आ बात बहुत सीखनी है, मैं कई बार यूं हाइपर हो जाऊं कि माँ नहीं इस बार तो अपन छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, अपन नहीं करेंगे इस पे बात। पर माँ कहती नहीं एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आज 5 साल हो गए मेरी शादी को, अब हो जाएंगे, पर इनका ट्राई खत्म ही नहीं हो रहा है।
2: ट्राई खत्म होना भी नहीं चाहिए,
1: ये ट्राई खत्म होना भी नहीं चाहिए। मैंने इनसे यही सीखा है कि आज मैं बहू हूं, कभी मैं भी सास बनूंगी या कभी मैं भी परिवार आगे लेके जाऊंगी, तो कैसे परिवार चलाना है मैं अभी सीख रही हूँ। पहले मैं छोटी बिंदी लगाती थी ऐसे आपकी साइज की छोटी बिंदी, अब मेरी बिंदी की साइज धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो कहते हैं ना कि जैसे पौधा भी बड़ा होता है तो मेरी बिंदी की साइज बड़ी हो रही है, मैं सीख रही हूँ, मैं काफी कुछ सीखी हूँ और सीखना बाकी है।
2: बिल्कुल आप जी की बिंदी री बात है, बहुत सुंदर बात है कि सासू जी मारा भैया अभी अब संसार में नहीं रिया, तो बेजद हाँ तो मैं जब छोटी बिंदी लगाया करती तो बे आई बात क्या करती कि सूरज और प्रकाश बड़ो होना चाहिए। तो मैं आप बात समझती हूँ नहीं, क्योंकि साहब जी का है आसाम रहता था और मैं गाँव में रिया करती, तो मैंने हमेशा यही बात कहता कि सूरज कठे भी रहो बिर प्रकाश कम को नहीं हुआ। मैं ये बात और मतलब समझी कौन है। और एक बार मैं सासू जी ने पूछो कि माँ आप रोज मना आप बात क्यों इरो मतलब कहीं है, तो सासू जी बोलिया कि पढ़ोड़ी है तुम। मैं क्यों हाँ मैं क्यों मैं केवल किताबी ज्ञान लिया हूँ, जीवन रोज को ज्ञान है वो मैं आज आपसे सीखना चाहूँ। तो वे बोलिया कि मारे कहना पदली कि मारो बेटो चाहे किसी जगह ही रहो बीरो प्रकाश जी को वो थार पर पढ़ो तो थारी जगह छोटी बिंदी है नी इन्हें बड़ी कर ले। तो आप बात जी की आप बोलिया हो तो जिका रिश्ता नाता है ए वाकई में परिवार से बहुत सारी चीजें सीखा और बठे सो ही आपा सीख परा आगे जिके आने वाली पीढ़ी में देवा, तो आपा आगे वाली पीढ़ी ने बई चीज दे सका जिके आपा खुद सीखिया। तो हर व्यक्ति रे जीवन में बहुत अनमोल पल हुआ करे शोभा जी, तो आप रे जीवन में भी कुछ ऐसा अनुभव है जिका आप आज भी बने याद करो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए।
0: पहले तो मैं जी की रानी बात बताई है कि मोतियोरी माला, तो आज की माला है इन्हें बहुत ही सहेज ने रखनी पड़े गृहिणी ने। तो कही है कि टूटन में तो एक मिनट लागे लेकिन इन्हें जोड़न में पूरा जीवन लाग जावे। तो सबसे बड़ी बात आई जाए कि

0: एक औरत यात्री आ जिम्मेदारी है उन घर परिवार री कि उन्हें माड़ा ने कदे भी बिखरण नहीं देवे। जितो भी आप रो जिको जोर लगाना है जिंदगी रमो ने, आप रो जिको भी आप एफर्ट लगा सको, आप कोशिश आ करो कि वाह माड़ा कदे भी टूटे नहीं वा बिखरे नहीं, क्योंकि वो परिवार है तो इन्हीं सारी जिकी धूरी है दारूमदार है उन लेडी माते होया करे। तो आप बहुत ही सुंदर बात समझी और आपने जी की बताई, और मैं आ कह सकूं कि वाह माला अगर मैं आज इन्हें हाथ में दे दूं तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल और मोने रानी ने इतना अनुभव हो गया है कि वाह माला ने सही ने रखेला। और जिन टाइम इन्हें पियरू मार्ग ने तारीफ रा शब्द आवे, इन्हीं मम्मी और इन्हें जिका भी रिश्तेदार है, मैंने मतलब सप्ताह में 2-4 फोन मारकर ना आ जाया करे कि आप इन्हें छोटी सी बच्ची ने कैडी हूं कैडी बना दी, तो मने लगे कि मारो जीवन सफल हो गयो। अगर चलो वीडियोस री बात तो एक अलग है, लेकिन वे लोग मने इन्हें सौंप दी। अबे माँ कितो सिखा सके, माँ पढ़ा सके लिखा सके, और एक छोटो बच्चो आपने सौंप दियो, आगे री जिम्मेदारी है जी अपोरी है। तो वे जिन टाइम इन मोने परिवर्तन देखे कि आप बहुत सुंदर तरीके हूं साड़ी पहननी सीख गई, खाना बनावनी सीख गई, व्यवहार कुशल होगी, इन मोने बात करने तरीको सलीको समझदारी, वो जिको परिवर्तन इन्हें पीरे वाला मने फोन करने कहवे, जरा मने लगे कि मैं कुछ तो हासिल कर लियो हूं और मैं इन मोने मारो फ्यूचर देख रही हूं, मारे जो साड़ी पहरे, मारे जड़ी बिंदी लगावे, मारे जड़ा खाना बनावे, और सब रो मन रखने कोशिश करे। रही बात है कि आप ससुरो जी रे बहुत ज्यादा टच में है, उन्होंने रीजन हुई है कि मैं थोड़ी सी उग्र स्वभाव रही हूँ जिन टाइम शादी होने आई, तो मैं हुए ना क्योंकि मेरे पति पत्नी रे बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वे पति परमेश्वर तो है ही लेकिन वे हमेशा हर रिश्तों निभायो मारे साथ है। तो मैं हुए ना इज कहो कि भाई एक मासूम दिल ची है, मैं अगर गुस्सा गुस्सा कर दियो तो वह शायद सहन नहीं कर पावेला, तो उन्हें ने मैं रसोई मसाते भेजती तो किन तरीके की चाय मने पसंद है या प्रतीक ने पसंद है, तो इन्हें सबसे पहले चाय बनावनी सिखाई। और इन्हें एक चीज कहो कि अगर बेटा माँ को खुश करना है तो माँ के जैसे काली मिर्च वाली चाय बनाना सीख ले, तो सबसे पहले चाय हूँ शुरुआत करी, और आज आ शाही सब्जियों बीजी 25-30 तरह का पराठा और सब कुछ ट्रेडिशनल खानो आप रे ससुरो जी को बनावनी सीखी है, तो उन्हें रमो ने धीरज थोड़ो ज्यादा है इन वास्ते वे इन्हें सब कुछ सिखायो। और क्योंकि आ नवी नवी आई जर थोड़ी डरी डरी सहमी रहती, तो उन्हें रोज को सपोर्ट हो इन दिल और दिमाग में तो वो बिल्कुल छाई गयो है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जी की है जो को सम्मान है ससुरो जी के प्रति वो बहुत ज्यादा है, नो डाउट माओ भी बहुत प्रेम करे, लेकिन कि आवते ही बहू ने जी को सपोर्ट मिलियो वो ससुरो जी मिलियो और उन्हें बच्चों बहुत याद रखे। और मैं बिल्कुल आपने बता रही हूँ इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन मोहने में मारो फ्यूचर देख रही हूँ और आ मारी उन माला ने कदे भी टूटने नहीं देवेला।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, आप दोनों रो भाव बता रही हो है कि आप दोनों रे बीच में कितना तो सारो प्रेम है जो को भरियोड़ो है। तो आप सुनता भी आया हाँ कि जट हेत है बठे ही जन्नत है, और आज आप दोनों से बात कर एहसास भी हो गयो कि आपसी तालमेल हुए तो हर घर है जो को स्वर्ग बन सके, और आप दोनों रो आदर और लाड यही बने रहे। आप दोनों रो आज की आप दोनों री आज की जुगल बंदी है हर घर ने एक नई सीख दे।
1: बिल्कुल, तो देखो आज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस आप मना रहा, तो रिश्ता री आज की ताना बाना है जुड़ोड़ा है। इन अवसर पर आज आप आकाशवाणी जोधपुर रे रेडियो रे द्वारा लोगों ने कई सलाह देना चाहला, कई इसी बात कहना चाहला ताकि हमारे जीवन में उजालो भर जाए और रिश्ता में मिठास बनोड़ी रहे।
0: मैं आईज कहवनी चाहूंगा कि सासू जी सबसे पहले तो आप सासूपणो छोड़ देवे, अपोरे कने भविष्य रो निर्माण करने वास्ते एक बहू आई है वह प्रेम पावने वास्ते आई है, तो पहल अपोने करनी है। उन्हीं गलतियों मत देखो, उन्हीं अच्छाइयों देखो, हर छोटी छोटी बात में उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें प्यार करो। सुबह उठते ही वह जिन टाइम आवे उन्हें गले लगा लो, उन्हें एक प्यार भरी पुच्छी दे दो। पछे देखो मारा कहने की जरूरत नहीं है, कुछ चंद बातों अगर आप कर लो ला जीवन में तो जीवन स्वर्ग बन जाला, और वो घर इतो अच्छो फड़ेला फूलेला कि जिका अपोरा हस्बैंड है वे भी सुखी रहेला, बच्चा भी आराम नौकरी बिजी करेला, और घर बहुत अच्छो एक जिको सुखी संसार बन जाला, इन घर रा बच्चा भी बहुत अच्छा पनपेला। तो मेन जी की शुरुआत है वह सासू जी आप एडी कर दो कि उन बहू ने आपरी दोस्त बना लो। दुनिया भर रा दोस्त बनावनी कोई जरूरत नहीं है, पहलो दोस्त आपरी अगर बहू रानी बन जावे तो

0: देखो घर वारा न्यारा हो जावे।
1: बिल्कुल की अगर एक सुखी परिवार जो है वो स्वर्ग रो पूर्व आभास है कि अपन स्वर्ग में तो बाद में जावाना,
0: बिल्कुल सही।
1: अगर अठे ही अपन है सुख मिल जाए तो अपन स्वर्ग की कामना है जी की करने की
0: अठाई जय
1: जरूरत ही नहीं
0: स्वर्ग
1: पड़े।
0: नरक सारा अठाई जय।
2: बिल्कुल आज आप सुमिलर घणो ही घणो चोखो लाग्यो। तो शोभा जी दिव्यांशी जी आपरो बहुत बहुत आभार कि आज आप जोधपुर आकाशवाणी रा स्टूडियो में पधार्या और ये कार्यक्रम री शोभा बढ़ाई। इनरे वास्ते आपरो पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप दोनों रो घणो ही घणो कोड भरियो। धन्यवाद।
3: धन्यवाद
0: धन्यवाद
3: आपने
0: साहब।
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी और सनसिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको

0: ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।

0: खान ने कहा कि एनडीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलंग से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बैडमिंटन की थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज

0: आज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की 1285वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है

0: कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ, श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं।

0: चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां धातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं धातु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर धातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। धातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। धातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने धातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962

0: जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
1: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
2: हाँ
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
3: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
3: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
3: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
7: हैं? आया साहब।
4: ओए, वो फायर आ रहा है। झुक जाओ। झुक जाओ। झुक जाओ। गाड़ी के

0: तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल,
3: सत्र का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
4: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह
6: और सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
7: वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। ऑल्दो ही वाजंट वेरी बिग, ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ होती है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा।

0: और क्या हालचाल। फ्राइडे इवनिंग जो है वो ऑफिशियली ऑन हो चुकी है, वीकेंड का मूड सेट हो चुका है और FM 102.1 शुरू हो चुका है, यूथ का फेवरेट शो युवाणी। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं।
1: हाँ जी, मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश, और अगले घंटे तक हम आपकी इवनिंग को बनाने वाले हैं फुल एंटरटेनिंग, फिल्मी और एनर्जेटिक।
0: दोस्तों, पूरे वीक असाइनमेंट्स, ऑफिस वर्कलोड, अटेंडेंस और डेडलाइन से फ्लाइट करने के बाद फाइनली आ गया है फ्राइडे।
1: और बिल्कुल सही कहा राहुल, और हॉस्टल रूम्स में स्पीकर ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, ऑफिस में लॉग आउट बटन है ना वो लोग दबा चुके हैं, और चाय के टपरियों पर है ना IPL एक्सपर्ट खड़े हो चुके हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, कहीं फैंटेसी लीग की टेंशन है तो कहीं क्रश के रिप्लाई का वेट किया जा रहा है।
1: और इसी फ्राइडे वाइब को और भी स्पेशल बनाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं IPL की, आर्ट और क्रिएटर्स की, और उन फनी सिचुएशन की जो लिटरली हर यूथ की लाइफ का पार्ट बन चुका है।
0: तो अगर आप भी ट्रैफिक में स्टक हो चुके हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, हॉस्टल में फ्रेंड्स के साथ चल कर रहे हैं, या फिर घर पर कूलर के सामने समर सर्वाइव कर रहे हैं,
1: बस वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एंटरटेनमेंट का फुल ऑन पावर। बिल्कुल हाँ जी, इस शाम के पहले ब्यूटीफुल रोमांटिक मेलोडी के साथ 90s की सॉन्ग की वाइब भी कुछ अलग होती है। नो ओवर एक्टिंग, नो नॉइज, बस प्योर इमोशन। तो एंजॉय कीजिए प्यार और नॉस्टैल्जिया के से भरा ये खूबसूरत गाना।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ। राहुल, आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2026 अब धीरे धीरे अपने सबसे एक्साइटिंग फेज में पहुंचता जा रहा है, जहां हर मैच प्ले ऑफ की कहानी बदल रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा नितेश आपने, लेकिन कल के मुकाबले की बात करें तो कल के मुकाबले के बाद एक टीम की टेंशन जो है वो काफी बढ़ चुकी है, वो है पंजाब किंग्स।
0: जी हाँ दोस्तों, लगातार पांचवी हार के बाद पंजाब किंग्स का प्लेऑफ का रास्ता है ना, वो काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है।
1: जैसे कि आपने कल की शाम देखा धर्मशाला में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का बड़ा स्कोर तो बना दिया था,
0: लेकिन एमआई की बैटिंग लाइनअप ने प्रेशर को हैंडल करते हुए टारगेट 19.5 ओवर्स में चेज कर लिया।
1: बिल्कुल, और ऑनेस्टली तिलक वर्मा की बैटिंग ने मैच का पूरा मोमेंटम जो है वो चेंज ही कर दिया था।
0: सही का बिल्कुल, और 75 रन के साथ ये शानदार इनिंग्स और टाइमिंग ऐसी कि बॉलर्स बस देखते रह गए।
1: वैसे सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं, कुछ फैंस होपफुल हैं तो कुछ बोल रहे हैं पंजाब किंग्स हर साल जो है वो इमोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करती रहती है भाई ये।
0: लेकिन यही तो आईपीएल है राहुल, और एक जीत है ना वो टीम को टॉप पर पहुंचा देती है, और एक हार पूरे स्कोर टेबल्स की जो कैलकुलेशन है वो पूरी बदल देती है।
1: अब देखना होगा कि इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि पंजाब किंग्स जो है वो कमबैक कर पाती है या नहीं। अगर कमबैक करना है तो लगातार दो मैच उन्हें आने वाले अब जीतने होंगे, अगर एक भी जीत जाती है तो उनको दूसरी टीमों पर और नेट रन रेट पर निर्भर रहना पड़ सकता है। फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने, प्रोग्राम युवाणी इज ऑन।

0: हाँ जी, फ्राइडे स्पेशल युववाणी आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ। राहुल, फ्राइडे स्पेशल में हम बात करते हैं आर्ट की, आर्टिस्ट की, और मारवाड़ की मिट्टी से निकला एक ऐसा क्रिएटर जिसने देसी अंदाज को बना दिया डिजिटल सेंसेशन। और कैसे शुरू हुआ ये सफर, परिवार का कितना मिला साथ, और कैसे बने राजस्थान के सबसे चर्चित मारवाड़ी कंटेंट क्रिएटर?
1: जी हाँ, बिल्कुल जानेंगे जोधपुर से डिजिटल दुनिया तक का सफर, मारवाड़ी कंटेंट का पहला चेहरा प्रतीक मुत्था से नितेश की ये खास बातचीत।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे नितेश, और आप सुन रहे युवाणी ओनली ऑन एफएम 102.1 पे, जहां बात होती है युवाओं के सपनों की, जुनून की, और उन कहानियों की जो दिल से शुरू होकर लोगों के दिलों तक पहुंचती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक ऐसे क्रिएटर जिन्होंने मारवाड़ी भाषा को सिर्फ बोला नहीं बल्कि उसे डिजिटल दुनिया में पहचान दिलाई। जोधपुर की मिट्टी की खुशबू फैमिली बॉन्डिंग और देसी ह्यूमर के कंटेंट में बदलकर लाखों लोगों तक पहुंचाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रतीक मुत्ता की, जो अपनी मिट्टी से जुड़कर उड़ान भरते हैं, वही असली पहचान बनाते हैं। भाषाएं तो बहुत है दुनिया में साहब, पर जो दिल की भाषा बोले लोग उसी के फैन हो जाते हैं। तो स्वागत है प्रतीक जी आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, नमस्कार, कमागणी पगला गुस्सा कैसा के कर जैसे किसन।
0: प्रतीक जी, सबसे पहले बताएं, जब सब लोग ट्रेंडिंग कंटेंट और बड़े शहरों के लैंग्वेज के पीछे भाग रहे थे, तब आपने मारवाड़ी कंटेंट बनाने का आइडिया कैसे सोचा, और क्या उस वक्त लगा था कि ये जर्नी इतनी बड़ी बन जाएगी? अगर अपन उस दौर की बात करें तो उस समय कोई भी राजस्थानी कंटेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था, और जो बड़े शहरों की बात करें दिल्ली, मुंबई, जयपुर, नोएडा, तो हिंदी कंटेंट तेजी से वायरल हो रहा था, तो कम ऑडियंस और इतना सारा रिस्क और सारी चीजें खुद ही करना, लिखना खुद ही, परफॉर्म खुद करना, डायरेक्ट खुद करना, तो ये सारी चीजों को आपने मेंटेन कैसे किया?
2: जी, टीस यही थी कि मैं दिल्ली मुंबई के क्रिएटर्स को देखता था, तो उनकी वीडियोस फनी तो बहुत लगती थी, लेकिन वो रेफरेंसेस लेते थे अपनी कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के, अपनी गली के, और अपने खाने पीने की चीजों के बारे में बात करते थे, ह्यूमरस तो लगता था, लेकिन टीस ये उठती थी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जब शुरुआत की तब मुझे सब लोगों ने कहा कि मारवाड़ी मत बना, मारवाड़ी में ऑडियंस नहीं है, नंबर्स नहीं है, लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा जुनून यही था कि करूंगा तो खुद की भाषा के लिए और खुद की भाषा में ही वीडियोस बनाऊंगा। और हिंदी में नहीं बनाना एक बहुत ही समझी हुई चॉइस थी कि मुझे हिंदी में वीडियोस नहीं बनानी है, क्योंकि रिलेटेबिलिटी जो एक चीज होती है कि जिस ह्यूमर को मैं मेरी भाषा में क्रैक कर सकता हूं, वो ह्यूमर मैं हिंदी में लेके आ ही नहीं सकता। जो शब्द हमारे पास है, जो मीठी बोली हमारे पास है, हिंदी के अंदर वो फील आ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने मारवाड़ी भाषा के अंदर शुरू किया, और जाहिर सी बात है कि एक ब्लूप्रिंट तो नहीं था, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद था और भरोसा था, क्योंकि जब हम भरोसे के साथ अपने माँ बाप को जाके बोलते हैं तो आपकी आंखों की चमक बोलती है और उनको लगता है कि ये जो करना चाह रहा है इसको करने दिया जाना चाहिए, और मुझे पूरी छूट थी।
0: दोस्तों, आज के युद्ध के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि ओरिजिनलिटी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, और प्रतीक ने वही किया, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं

0: किया, उन्होंने अपनी कल्चर, अपनी फैमिली और अपनी लैंग्वेज को ही अपनी असली ताकत बनाई। तो इसी ताकत के साथ आप आज यूथ के आइकन बन चुके हैं, लेकिन हर सफलता के पीछे एक स्ट्रगल होता है। तो सबसे पहला वीडियो बनाते समय कैमरा के सामने आपको कुछ फियर था, या कभी कभी ऐसा लगा क्या कि भाई आपने एक दो वीडियो बना लिए हो, या ये चीज तो मेरे बस की नहीं है, ऐसा कभी फेस किया आपने इस जर्नी के दौरान?
1: देखिए, एक कलाकार होता है, उसका ईंधन होता है अप्रिशिएशन कि लोग तारीफ कर रहे हैं कि नहीं। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो इनिशियली जो आसपास के लोग थे वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे। वो कहते थे कि ये सब बकवास है और इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक टाइम पास है। और मुझे लगता था कि ये टाइम पास नहीं, आय का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो पहला जो चेक मार्क हो या टास्क है वो यही था कि इसको मोनिटाइज कैसे किया जाए, वीडियो बना के पैसे कैसे कमाए जाए। और मुझे लगता है चाहे बात वीडियो की हो, चाहे माड़ भाषा की हो, या लोगों के भरोसे की हो, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो शायद मुझे 90 दिन भी नहीं लगे होंगे और मेरे पास मेरे हाथ में पहला चेक था। मैं 1 साल के लिए सॉर्टेड था, मुझे 1 साल के लिए कमाई की जरूरत नहीं थी, सोचने की जरूरत नहीं थी। तो जब भी कोई व्यक्ति, जो कोई बच्चा आज भी अगर वीडियो बनाना शुरू करता है तो पहला जो चीज दिमाग में आती है कि आय का सोर्स क्रैक कर लो, क्योंकि माँ बाप ये नहीं चाहते कि हम जो चाहते हैं तो वो करो, वो ये आपकी चिंता रखते हैं। आप कुछ भी काम करो, अगर आपका लाइफ सिक्योर और सेफ है तो वो आपको करने देंगे।
0: प्रतीक, राजस्थानी कंटेंट का जो बीज है वो आपने बोया है, और अब जो नए क्रिएटर सामने आ रहे हैं तो उनके लिए काफी आसान बन चुका है, क्योंकि वो आपकी वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मुझे व्यू लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन किन को मेरे साथ जोड़ना चाहिए। शुरुआत में व्यूज नहीं आते थे, तब खुद को मोटिवेट कैसे किया था?
1: अलख जो होती है ना, जब आपको कोई काम करना ही है तो मुझे लगता है कि व्यूज बाय प्रोडक्ट होता है। आज के बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जुड़ जाते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे। 1,000 व्यूज भी उनको बहुत कम लगते हैं, लेकिन मैं जिस समय में काम किया करता था, मेरे लिए 1,000 व्यू एक माइलस्टोन की तरह था, क्योंकि मुझे पता है 1,000 लोग जब सामने खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं। तो व्यूज जो था वो बाय प्रोडक्ट था। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूर था कि मैं वीडियोज बनाता रहूं, वो मेरे लिए जुनून के जैसा था। अगर मैं किसी दिन वीडियो नहीं बनाता तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने कभी भी व्यूज या पैसे के लिए काम किया ही नहीं। आज भी मैं बच्चों को यही कहता हूँ जो वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि ये बाय प्रोडक्ट है, ये तो समय के साथ आ ही जाएगा। विराट कोहली भी अगर क्रिकेट में खेलने उतरता है तो उसका खेल अच्छा करना है, उसका ये ध्येय नहीं रहता है कि उसको हर बॉल में छक्का मारता है। कुछ वीडियो चलेंगी, कुछ नहीं चलेगी, लेकिन जरूरी है प्रोसेस, उसको एंजॉय करो।
0: बिल्कुल, और राजस्थानी की एक कहावत भी है, जहां पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो जब आपने मारवाड़ी में कंटेंट बनाया तो जब तक वो वायरल नहीं हुआ तो वो सबके पास पहुंचा नहीं, तो कंटेंट बनाने वक्त आपका वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि भाई हाँ, अब मुझे फील हो रहा है कि मेरा कंटेंट सब जगह वर्चुअली पहुंच रहा है और सब लोग मेरे को पहचानना स्टार्ट कर दिए, मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो वक्त कब आया?
1: देखिए, जिस तरीके से हिंदी वीडियोस का बोलबाला था, उस तरीके से मैं भी मारवाड़ी सुनना चाहता था, मारवाड़ी में वीडियो देखना चाहता था। तो मेरे जैसे काफी और लोग हैं जो मारवाड़ी भाषा के अंदर वीडियोस देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। तो शीतलाष्टमी का एक त्यौहार था और मैं उसके ऊपर रिलेटेबल कॉन्टेंट बनाना चाहता था कि घर में जब शीतलाष्टमी होती है तो किस तरीके से हम ठंडा बासोड़ा खाना बनाते हैं, घर में क्या माहौल होता है, औरतें किस तरीके से रसोई में काम करती है। मैंने उसके अंदर अपना ह्यूमर ढूंढा और उसके अंदर ही वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया। 24 घंटे के अंदर 5 मिलियन व्यूज आ गए। उस समय में इंटरनेट महंगा हुआ करता था, 5 मिलियन व्यूज आज भी बड़ी बात है, तब तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वो एक पहली वायरलिटी थी और आज भी जो वीडियोस बनाते हैं मैं उनको यही कहता हूं कि जितना ज्यादा लोकल उतना ज्यादा ग्लोबल है। जितनी ज्यादा प्राइवेट बात, जितनी ज्यादा पर्सनल बात, अपने दिल की बात करोगे वो उतनी दूर तक जाएगी।
0: और इस जर्नी के दौरान क्या कभी लोगों ने कहा कि ये सब छोड़ यार, ये करियर नहीं है?
1: लगातार मुझे लोगों ने कहा कि मारवाड़ी में मत बना, हिंदी में बना, इसके अंदर करियर स्कोप नहीं है, वीडियोस बनाने से क्या होगा। जो पहले रिलेटिव्स मिला करते थे वो कहते थे कि इसमें स्कोप नहीं है, ये मत कर, इसका पेपर भर दे, उसका फॉर्म भर दे, और आज वो ही अपने बच्चों को लेके आते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं। तो जरूरी ये नहीं है, मतलब ये सब तो होता ही है, जरूरी ये है कि खुद पे विश्वास बना के रखो, कोई भी काम करो, समय के साथ सब कुछ हो ही जाता है।
0: और शुरुआत में फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा?
1: मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी काम करे, जो आपके काम का बैकबोन होता है वो आपका परिवार होता है। अगर परिवार साथ नहीं देगा तो काम बनेगा ही नहीं भाई साहब। तो परिवार बैकबोन की तरह पीछे खड़ा रहा। जब मैंने पहली बार उनको जाके कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं नौकरी कर लूंगा लेकिन मुझे वीडियोज बनाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा 1 साल का समय दीजिए, अगर 1 साल में कुछ नहीं होता है तो मैं बाकी देखूंगा। उन्होंने कहा तुझे जितना टाइम चाहिए तू कर, तेरा जीवन है, तू जैसे ले जाना चाहता है। तो परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, परिवार आपके साथ जाता है ना तो बाकी सब चीजें मक्खन हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा, और वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आपको कब लगा कि भाई मेरे वीडियो में और लोगों की जरूरत है, तो क्यों ना मैं बाहर से हायर करने से अच्छा है मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ही इस कंटेंट की दुनिया में जोड़ू और उन्हीं उन्हें भी मेरा जैसा बना दूं।
1: देखो मारवाड़ी आदमी जो होता है वो बहुत ही कॉस्ट के बारे में सोचता है कि मैं एक्टर्स लेके आऊंगा तो डेफिनेटली पैसे लगेंगे, तो

0: मैंने सोचा कि अगर वीडियो बनानी है, मदर्स डे पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने माँ को कहा कि अगर आप एक्टिंग नहीं करोगे तो फिर माँ क्या, फिर मैं भाड़े पे माँ लाऊंगा क्या। तो मैंने मेरी माँ को कहा कि वीडियो तो आपको बनानी पड़ेगी। मदर्स डे पे माँ की वीडियो बनी और वो माँ की वीडियो भी वायरल हुई, और फिर लगता है कि मेरी माँ के अंदर का कलाकार जाग गया, और आज मेरी माँ मुझे झकझोर के कहती है कि मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख, 4 लाइनें ज्यादा बड़ा, मेरी वीडियो क्यों नहीं बना रहा है। तो इस तरीके से परिवार बढ़ता गया, फिर माँ ने शादी करवा दी, अब हम बहू रानी का भी साथ में बना रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि आप घर के अंदर वीडियो बनाते हैं, घर वाले ही आपको पोषित कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर आप उनको अपने बिजनेस में जोड़ दो तो और जो पेड़ है अच्छे से खिलता है, तो कभी इस बारे में चिंता नहीं की। और जितने लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, घर से शुरू करना चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि कहीं बाहर एक्टर्स के लिए मत भागो, सबसे पहले घर के अंदर ही खोजो, एक्टिंग तो हो ही जाएगी। और मुझे लगता है कि मेरी बीवी और माँ एक्टिंग नहीं करती है, वो अपनी बड़ास ही काटती है शायद वीडियो में मेरे ऊपर, तो रियलिटी है कहीं ना कहीं।
1: और घर में सबसे ज्यादा रिटेक कौन करवाता है?
0: देखिए, समय के साथ साथ ये कहूंगा दोनों थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं रिटेक करवाने की बात। तो ऐसा है कि मेरे अंदर ये कीड़ा है का एक्सपर्टीज का, कि और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है पहला टेक सबका बढ़िया ही होता है, दूसरा और सुंदर होता है, तीसरा बेस्ट होता है, और पांचवा नगीना होता है। तो इस तरीके से रिटेक कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन अब दोनों काफी सीख गए हैं।
1: क्या आज भी घर में वही सिंपल प्रतीक है या फिर इन्फ्लुएंसर वाली या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आती है?
0: देखिए, घर के अंदर मेरा नाम छोटू है, और छोटू वो होते हैं जो सब्जी खरीदने के बाद फ्री में मिला धनिया होता है। तो मेरी उस धनिया जैसी हालत है घर के अंदर, तो वो इज्जत आपको कभी घर के अंदर ना मिलने वाली है, और ना आपको उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप उम्मीद करते हो कि घर के अंदर आपको इज्जत मिलने लग जाए, तो महामूर्ख हैं आप। आज भी वैसे ही सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, माँ पैसे देती है, माँ से ही पैसे लेके जाते हैं, पिताजी से पैसे लेके जाते हैं। और ये चीजें अगर साधारण बनी रहे, सॉर्टेड रहता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव व्यूज ऊपर नीचे बने रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है माँ बाप का प्रेम स्नेह, उनकी डांट डपट, तो वो हम टाइम टाइम पे खाते रहते हैं, डोज मिलती रहती है। आज भी मुक्का खा के आया हूँ।
1: और आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, ये टैलेंट दिखाने का सबसे बड़ा स्टेज बन चुका है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, कंसिस्टेंसी है, तो अपने रूट से प्यार करो तो सक्सेस एक दिन जरूर मिल जाएंगी। तो प्रतीक, आज बहुत सारे यंगस्टर जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस युववाणी प्रोग्राम के माध्यम से?
0: जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि ये इसको आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप जब पानी में डूब रहे हैं, तो हाथ पैर मारते हैं, तो आप कितनी ऊर्जा और एनर्जी लगाते हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करिए जो कि उस तरीके का नहीं है जैसा माँ बाप आपसे करवाना चाहते हैं, तो मेहनत उतनी कीजिए कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे। जब उस स्तर की मेहनत होती है, तो कहीं ना कहीं रोशनी मिल ही जाती है। और खुद के साथ वादा कर लीजिए कि सुबह जल्दी उठना है और इतने दिनों तक लगातार काम करना है। जैसे मैं बच्चे आजकल मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ 90 दिन का टारगेट बनाओ। अगर सोशल मीडिया पर 90 दिन तक आपने रोज एक वीडियो डाल दी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हुनरमंद हो और आपका तारा नहीं चमके। तो खुद के साथ एक प्रॉमिस कर लो कि 90 दिन तक मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगा, और आपका जीवन बदल जाएगा, निराश ना हो बस।
1: और वही साथ ही साथ प्रोग्राम में मैं आगे ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपकी मेहनत लगती है आपको कुछ बनने में, तो कई महीने कई वर्ष लग जाते हैं इस चीज में, और ये तो जर्नी लाइमलाइट वाली है, फेमस होने वाली है। तो कभी किसी लोगों ने कहा भाई ये तो प्रतीक हमारे पास बैठता था और रातों रात फेमस हो गया है, तो ऐसी चीजें कभी आपने फेस की है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कंटेंट है वही हताई वाला है, लोगों वाला है, शहर का है। मैं उन लोगों के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बातें तो होता ही है, रिलैक्स तो मैं होता ही हूँ, लेकिन मुझे कंटेंट भरमार मिलता है। तो जब भी मुझे कंटेंट की कमी मिलती है, तो मैं शहर में निकल जाता हूँ, बाहर घूमने निकल जाता हूँ, उन लोगों के बीच बैठता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जमीन पे खींच के रखते हैं पहली बात तो। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा कि भरमार कंटेंट देते हैं, जितना आंख और कान खुले रखता हूँ उतनी ही वीडियो अच्छी बनती है।
1: वही कंटेंट क्रिएटर की दुनिया की बात करें तो जब आप फेमस होते हैं, वो आगे बढ़ते हो, तो काफी लोग होते हैं, काफी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो आपको अप्रिसिएट करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स करते हैं, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो?
0: मैं तो कहूंगा कि बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग हैं जो अपमान करे आपका, जो टीस उठाए आपके जीव के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईंधन का काम करता है कि अब तो मैं तेरे को करके बताऊंगा। शुरुआत में अब ये बचकाना स्वभाव था कि अब मैं करके दिखा दूंगा, अब मैं दिखा दूंगा तेरे को, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आता है कि कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ लोगों के बच्चे भी नालायक होते हैं, तो वो कंपेरिजन आपके साथ करते हैं, और आप तरक्की करेंगे तो लोग आपके ऊपर आके उंगली उठाएंगे और आपको नीचे खींचने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो ईंधन का काम करेगा आपके जीवन के अंदर। अगर है तो आप भाग्यशाली हैं। सब लोग तारीफ करें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कलाकार तो आधा झाड़ पे चढ़ा रहता है, और मैं तो उनमें से ऊंट ट्री हाउस बना रखा है मैंने। तो जो लोग आपको उंगली दिखाते हैं, आपका अपमान करते हैं, अच्छी बात है, ऐसे लोग होने चाहिए। कॉन्स्टेंट कंपेनियन बना के रखो ऐसे लोगों को आपका जीवन में।
1: बिल्कुल, कलाकार है वो कल को आकार देता है।

0: है और प्रतीक ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की और कुछ ऐसे सोशल मीडिया से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो सारी चीजें क्लियर कर दी और हम काफी समय से साथ बने हुए हम बात कर रहे हैं तो सब लोगों को पता है कि प्रतीक हमारे साथ जुड़े, तो मैं आपकी आवाज में कुछ बोल के हमारे श्रोताओं को बताया ताकि उनके लगे हाँ भाई रियली प्रतीक ही हमारे साथ है। कुछ एक ऐसे अपनी जो आपकी वॉइस है जो आप बात करते हैं उसी आवाज में उसी लहजे में एक बार हमारे श्रोताओं से बात कीजिए।
1: देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा आपने कि अगर कितना ही थे बाहर जाओ पिज्जा पुज्जा पास्ता खा लो पेट ही खराब वेला खिचड़ा खा लो मारा हाथ रो दबाने उड़ माते घी खा लो और खाते खा लो खाटी छाछ वाह खाटी छाछ जावे लानी मोने। तो एक तो देखो अपोरा तैयार हो जाला कि अपने गर्मी में लागे नहीं गर्मी और पचे बढ़ जाओ कूलर आ गया जी की दो पार काटो लात है अगले 7वें 8वें घंटे उठोला चेतो ही नहीं रहला कि उठे गटो तो बस वही जाए मारा हाथ रो खाओ डटने खाओ घी पियो मस्त कभी नो दस्त।
0: क्या बात है, क्या बात है, फनी माहौल बन चुका है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक फन रैपिड फायर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आपको फटाफट बताना है कि आपको रील्स पसंद है या फिर रियल लाइफ।
1: जी मुझे तो रील्स पसंद है। फैमिली
0: फैमिली एक्टर सबसे फनी कौन है आपके लिए?
1: एक्टर में मेरी माँ है फुल रियल करती है एकदम बाप काट देती है कैमरा के सामने आके ऐसा खोलती है पूरा ही मतलब ऐसा लगता है असली में मुक्का मारती है असली में थप्पड़ मारती है वीडियो में।
0: और जोधपुर की सबसे फेवरेट चीज आपके लिए क्या है?
1: ये मैटर करता है कि कौन सी जगह खड़ा हूँ पास में नमकीन है तो वो खा लूंगा और मीठा है तो वो खा लूंगा जिस इलाके में खड़े हो उस इलाके की सबसे सुप्रसिद्ध चीज खा लो वही फेवरेट है।
0: मारवाड़ी में एक लाइन अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एड़ो बचे गई है बाप काट देनी मन रो मन में नहीं रागनो खुल्ला खेलो।
0: और वही अब मैं जानना चाहूंगा, एक फनी रील बनाने के पीछे आपकी कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है? शुरुआत में तो काफी दिक्कतें आती होगी, बट अब तो आपके लिए चीजें सारी रेगुलर हो चुकी हैं, तो वो चीजें क्या है वो जरा
1: आप
0: बताइए।
1: रे जुनून रे माते निर्भर करे कि एक सामने कुछ आइडिया आता है कि ऐसा कुछ बन सकता है तो अब इतना प्रोसेस इजी हो गया है कि अगले 3 घंटे में वो वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। शुरुआत में इस प्रोसेस को पूरा करने में 3 दिन लगते थे फिर हम 2 दिन लगे 7 घंटे लगने लग गए 10 घंटे लगते थे अब ऐसा हो गया है कि 2-3 घंटे में वीडियो निकल के आ जाती है बाहर।
0: कई बार हम वीडियो बनाते हैं बनाते कंटेंट लिखते चले जाते लिखते चले जाते हैं, कई बार ऐसी चीज लिख देते हैं और उसे हम परफॉर्म करते हैं वो सीधा दिल से जुड़ जाता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जब आप फैमिली वाले सब साथ बैठ के लिख रहे थे और उसको फिर वीडियो बनाया, जब वो वायरल हुआ, जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा उस पर रीच आई, तो उस वक्त आपको कैसा लगा?
1: मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ऐसा कंटेंट ऐसी आर्ट ऐसी कला ऐसी कोई वीडियो देख के लोगों की आंखों में आंसू आ जाए वो कुछ महसूस करे तो वो आपका लिखा हुआ नहीं है वो ऊपर वाले ने आपके पन्ने पर उतार दिया है आपको निमित्त मात्र बनाया है। तो घर के अंदर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं अपने पिताजी के पास जाता हूँ किसी मुद्दे पर डिस्कस करता हूँ और हमारे डिस्कशन के अंदर ही वो चीज़ निकल के आती है तो उसका क्रेडिट हम ले ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमको गिफ्ट के रूप में वो स्क्रिप्ट दे दी है कि हम उसके ऊपर काम करें लोगों तक वो बात पहुंचे और उनको कुछ महसूस हो। आपके 4 दीवारी में बैठ के कोरे कागज पे लिखी गई बात का असर इतना होता है कि कोई अपने घर के अंदर अपने देश अपने शहर में बैठा महसूस करता है उसकी आंखों में आंसू आता है कितनी खूबसूरत चीज है। इतनी खूबसूरत चीज का क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूँ ये तो ठाकुर जी की कृपा है सर कि ये काम हो रहा है।
0: क्या बात है, बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने इस क्वेश्चंस का। और वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा, जो हमारे जो भारत के यूथ है वो अगर बात करें उनकी, तो एकेडमिक रूप से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे, स्पोर्ट्स करियर की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छा ट्राई करे। अगर हम कंटेंट की दुनिया की बात करें, अगर जो युवा साथी इससे अपने एज ए करियर के रूप में वो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शुरुआत में उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो अपनी तैयारी रखे ताकि वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन जाए या फिर एक फेमस क्रिएटर बन जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी जितने भी लोग जो वीडियो के जगत में आना चाहते हैं मैं जाहिर सी बात यही कहूंगा सबसे पहले तो कि फेमस बनने के लिए मत कीजिए प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कीजिए। वीडियो बनाना आपको अच्छा लगना चाहिए काम करना आपको अच्छा लगना चाहिए लोगों को हंसाना आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर इसमें आपकी खुशी निहित है तो आपका काम आसान हो जाएगा लेकिन अगर आप प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे तो काफी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। रास्ता यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप में खुशी मिल रही है कि नहीं उसके बाद व्यूज आते हैं शोज आते हैं प्रसिद्धि मिलती है वो सब बोनस ही लगता है। इस मानसिकता के साथ काम मत कीजिए कि मुझे प्रसिद्धि होना है। हाँ जरूर मैं ये कहूंगा कि ऐसी अलख आपके अंदर होनी चाहिए लेकिन सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए। काम करते रहिए उसमें खुशी महसूस करते रहिए।
0: बिल्कुल, और लगातार जो आपके कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। एक फैमिली ट्यूनिंग है जो आपने सेट की है पूरे भारत में कि कैसे सब साथ बैठ के एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पूरी फैमिली एक ही काम कर रही है और उसमें प्रसिद्ध भी हो रहे हैं और सारी चीजें जो उन्होंने सोची है वैसा निकल के भी सामने आ रही है। तो कभी सोचा क्या कि इस काम को थोड़ा और

0: यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस डालते हैं या फिर एक फैमिली शो लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों तक जो हमारा असली कंटेंट है, जो हमारा हुनर है, वो हम पहुंचा सके।
1: मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो कभी रुकने का स्वभाव ही नहीं है कि वेब सीरीज जरूर मैं लिख रहा हूँ और वेब सीरीज बनाने का प्रोग्राम भी है। वेब सीरीज भी बनाएंगे, फिल्में भी बनाएंगे कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके अंदर जितना बेहतर हो सके आगे करते रहिए और मैं उसी के अंदर कार्यरत हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं असमंजस में पड़ा होता हूँ कि अब कई करो कई करो, तो मेरी माँ आके मेरे को कहती है कि अब कुछ धमाका कर दे, कुछ धमाका कर दे। तो वही है कि कुछ धमाके स्वरूप कार्ड तो स्वरूप स्क्रिप्ट हम लिखते रहते हैं तो निकलेगा कुछ ना कुछ अच्छा लोगों के लिए।
0: वही सोशल मीडिया की बात करें तो जब एक यूथ जब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है तो इसका एडिक्ट हो जाता है और वो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करता रहता है और सोचता रहता है कि यार मैं भी कुछ बनाऊंगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा, पर नहीं, वो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करता जाता है और अपना टाइम वेस्ट करता जाता है। तो उस यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे और सामने चलता नाटक देखते रहेंगे तो या तो आप खुश होंगे या तालियां बजाएंगे, और अगर आपको वाकई में स्टेज के ऊपर आना है तो आपको पर्दे के पीछे काम सीखना पड़ता है। ये एक लूप की तरह है, आप या तो स्लेव बन जाएं इंस्टाग्राम फेसबुक के कि आप स्क्रॉल करते रहिए, लेकिन अगर वाकई में आपको कंटेंट बनाना है तो आपको मोबाइल में देखना कम और जिंदगी में देखना शुरू करना पड़ेगा। आप जितनी अपनी सोसाइटी, अपने आसपास माहौल, लोकेलिटी में लोगों को देखेंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा, और अगर रील ही देखते रह जाएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे और आप उसमें कंज्यूम हो जाएंगे। एक्चुअल में अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है तो मैं चाहूंगा कि हलवाई कुदरी मिठाई कदे खावे गोनी, तो उसी तरह अगर आपको वीडियोस बनाना है तो सबसे पहले तो वीडियो देखनी बंद करो, तो वीडियो बनानी शुरू करो।
0: बिल्कुल सही कहा। और वही मैं साथ ही साथ प्रतीक ये जानना चाहूंगा कि आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते?
1: देखो, कलाकार वो जीव जी को वह वो कलाकारी रो कीड़ो लेन पैदा हुए। मैं जब कंटेंट क्रिएटर नहीं था तब भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्टेज पे जाता था, डिबेट कंपटीशन में जाता था, स्पीचेस देता था, और ऐसा कोई मौका नहीं होता था स्कूल के अंदर जब लिस्ट तैयार होती थी कि भाई एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कौन करेगा, तो पहले नंबर पर लिख दिया जाता था प्रतीक तो है ही और कौन है। तो कुछ नहीं करता तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करता होता, स्टेज पे हाथ में माइक जरूर होता। लोग मुझे कहते भी है इंस्टाग्राम नहीं हुई तो कही करी, फेसबुक नहीं हुई तो कही करी, एक दिन यूट्यूब बंद हो जाए तो कही करो। बंद हो जाए तो हो जाए, मुझे उस दिन की भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा हुनर, हमारी कलाकारी तो हमारे अंदर ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्टेज पे होंगे हाथ में माइक लिए हुए, ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे।
0: और कभी ऐसा हुआ है कि वीडियो बनाने के दौरान बड़ा फनी इंसिडेंट हो गया हो कि भाई यार ये क्या बना दिया या फिर क्या कर दिया, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, बस ऐसे ही हंसी मजाक में बन गया बस, और बना ऐसा कि लोगों तक पहुंच के लोगों ने जो उसे एंजॉय किया, और अभी तक उस एक रील पे हमें आज तक मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है?
1: देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं ना, तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं, हम हमारी ऊर्जा प्रेषित कर रहे हैं लोगों तक, हम जो महसूस करते हैं, हम जो खुश रहते हैं। 98% जो हमारे घर के अंदर माहौल होता है ना, वो तो हम दिखा ही नहीं पाते, हम सिर्फ 2% वीडियो के जरिए बता पा रहे हैं। तो जो माहौल होता है हम उसी को प्रेषित करते हैं लोगों को। अगर आपको कोई वीडियो देख के बहुत मजा आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको बनाने में हमको कई गुना ज्यादा खुशी महसूस होती है, हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं कैमरा के पीछे और इंजॉय करते हैं, और इंजॉयमेंट में वीडियो बन जाती है। इसीलिए मुझे लगता है मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जीवन में एक बहुत बड़े वैकेशन के ऊपर हूँ। काम में अगर मजा आने लग जाए ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी आंखों के अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, लोगों को वो समझ में आ जाता है। लोग बहुत होशियार हैं, उनको ये चीजें दिखती है और कैमरा सब पकड़ लेता है। तो अगर मैं राजी नहीं तो लोगों को ही राजी करो, तो सबसे पहले मैं ही राजी हूँ सर, लोग तो पचे राजी हुए।
0: बिल्कुल। और सोशल मीडिया प्रेशर और जो मेंटल बैलेंस है वो कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद भी है ना ग्राउंडेड कैसे रहना है, उसको आज तक आपने कैसे कंटिन्यू किया?
1: दरअसल क्या है, एक सक्सेस बहुत सरलता से नहीं मिली, लेट में नहीं मिली, काफ़ी जगह पर अपमान खाए, काफ़ी जगह पे धुड़िए खाए, धक्के खाए, बातें सुनी, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो क्या चीज़ है। जब लोग मुझे कहते हैं कि आपके अंदर ईगो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है करूँ किस बात का, मैं वो वाला जीवन देखा है मैंने कैसा होता है। तो यही है कि आज की तारीख में बच्चे काम करते हैं, उनके थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उनके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे लोग हैं। मुझे लगता है चर्चित होना जो है ना बहुत सरल हो गया है, वीडियो वायरल करना बहुत सरल हो गया है, इंस्टाग्राम ने ये चीज़ें बहुत इजी कर दी है। मैं चर्चित होने के लिए काम नहीं करता, मैं यादगार बनने के लिए काम करता हूँ। आज की तारीख में कोई भी FM रेडियो पे आके लड़की पागल है पागल है पागल है चर्चित कर सकता है उस गाने को, इंस्टाग्राम पे 10-12 दिन तक चलेगा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसा यादगार बनने के लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। मैं चर्चित होने के लिए काम कर ही नहीं रहा, मुझे तो यादगार होना है।
0: तो जब से बातचीत स्टार्ट हुई है तब से आपके लहजे से यही पता चल रहा है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और हर क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी सरलता के साथ दे रहे हैं, अपनी जर्नी को बड़ी सरलता के साथ बता रहे हैं। तो ये चीजें आपको किससे सीखने के लिए मिली, या फिर आप

0: में ये सारी चीजें इनबिल्ड है।
1: देखिए 450-500 रुपए का पिज्जा आता है, साथ में पास्ता आएगा तो 250 रुपए लगेंगे, फ्रेंच फ्राइज लगेगी तो 150 रुपए लगेंगे। जब आप कैफे से बाहर निकलते हो ना कॉफी पी के, तो आप 800-900-1000 रुपए 1200 रुपए खर्च करके निकलते हो। 250 रुपए में किताब आती है और 1200 रुपए में आपकी छोटी मोटी रैक भर जाएगी किताबों की। किताबों से दोस्ती करिए, जितना ज्यादा किताबों से दोस्ती करेंगे, पढ़ने की टेंडेंसी बनाएंगे, रोज रात को थोड़ा बहुत पढ़ के सोएंगे, आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करेगा वो। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि ये पिज्जा पास्ता से थोड़ा ऊपर उठ के थोड़ा प्रेमचंद पढ़ो, थोड़ा हरिशंकर परसाई पढ़ो, आनंद आएगा जीवन के अंदर। और ये जो बड़े बड़े जो महानुभाव स्तंभ रूपी हमारे जीवन के अंदर लिख के चले गए हैं, इनको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि किस बात का गुमान करें, किस बात का अहम अहंकार करें, डाउन टू अर्थ रहना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और जब आप बड़े शहरों में जाते हैं, जब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो उस वक्त आप कैसा फील करते हैं कि भाई जो चीज़ें मैंने सोची थी कि एक दिन मैं फेमस होऊंगा और उन लोगों के साथ बैठूंगा या फिर उनके साथ काम करूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको उस वक्त कैसे लगती है?
1: जितने ज़्यादा बड़े शहरों में जाता हूँ और जितने बड़े लोगों को मिलता हूँ ना मैं, उतना ही ज़्यादा मुझे अपने शहर से प्रेम होता है, उतना ही ज़्यादा मुझे अपनी हताई याद आती है। क्योंकि जितने भी बड़े शहर और बड़े लोगों के बीच में मिल लो, आपको पता लगेगा कि वो अपने शहर और अपनी गली से ही निकल के आए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में वो बातें रिफ्लेक्ट करती हैं। और जितना भी बड़े शहर के अंदर चला जाओ, आपको एक जेल सा महसूस होगा, खुदरो शहर तो खुदरो ही है। तो उन लोगों से मिलके भी मुझे एक ही चीज़ महसूस हुई कि जी की चीज़ मोरे गन्ना है, वह दुनिया में कटे को नहीं, घूम फिरना है अपने अटी जाने, मालपुआ मालपड़ा गुलाब जामुन खाणो पड़ेला जिको मोरे गन्ना ही है। तो जितने भी बड़े शहर और बड़े लोगों में जाता हूँ, अपना शहर वाकई मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़ा लगता है। लोगों के मोटी बिल्डिंग हो सके, मोरो मोटो कार जो है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वही बात करें तो जोधपुर शहर की, तो यहाँ पे वेब सीरीज से लेके टीवी सीरियल, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज, ये सारी चीजें यहाँ पे काफी समय से, ये नहीं कह रहे कि अब अभी कुछ सालों से यहाँ पे जोधपुर शहर में शूट हो रही है। अगर पुरानी बात करें तो पुरानी मूवी वगैरह सारी चीजें यहाँ पे शूट हो रखी है। पर जब जोधपुर का बंदा ऐसी चीजें जब सोचता है कि मुझे या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए या एक्टर बनना चाहिए, तो उस वक्त जो फैमिली का रिएक्शन होता है वो काफी अलग होता है। और जब आप इस की शुरुआत कर रहे थे, तब उस समय आपका जो फैमिली सपोर्ट था वो कैसा रहा? और जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि वो एक अच्छा क्रिएटर या फिर एक अच्छा एक्टर बन सकता है, तो उसे कैसे सपोर्ट करें? क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, वो चाहे स्टडी की बात करें, वो चाहे कंटेंट क्रिएटर की बात करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि टावरिया की भी काम करो, कुछ भी काम आपको करना हो, जब आप अपने माँ बाप के पास जाओगे ना, आपको अगर वाकई में वो काम करना होगा ना, आप समझाने की कोशिश करो कि आपकी आंखों के अंदर जो चमक होगी वो आपके माँ बाप समझेंगे, उस चमक को समझते हैं, आपको पैदा किया है उन्होंने। और अगर आप देखा देखी में कर रहे हो कि नहीं मुझे फोटोग्राफर बनना है या मुझे वीडियो बनानी है या मुझे क्रिएटर बनना है जस्ट बिकॉज ऑफ फेम सक्सेस, फ्री की चीज़ें, गाड़ियों में घूमना, बड़े शहर में जाना, चमक दमक के चक्कर में अगर आप जाके बोलोगे तो वो भी समझ जाएगा कि टावर में दौड़ गोनी है, देख दिखाना आया है। एक्चुअल में अगर किसी को कोई चीज़ करनी होती है ना, तो वो पहले करके दिखाता है, फिर उसमें कुछ अचीव करता है, फिर चुपके से उस बात को खोलता है, अपने माँ बाप के सामने जाके बोलता है और बोलता है कि देखो इतने फॉलोअर्स तो हो गए हैं, अब मुझे इस काम को और आगे कंटिन्यू करना है। तो आंखों में चमक दी कि बस चमक रहे, लारे काम करो।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतीक। और दोस्तों आज की बातचीत यही साबित करती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े शहर से होना जरूरी नहीं है, आपकी सोच है ना वो बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रतीक युवानी में आने के लिए। मैं हूँ आरजे नितेश और आप सुन रहे थे युवानी ओनली ऑन एफएम 102.1 पे। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो हर मौसम में खड़ा रहता है, नाम वही रोशन करता है दुनिया में जो अपने सपनों के लिए अड़ा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जो आज हमारे साथ आप जुड़े।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आनंद लेता रहो, आगे देता रहो।
2: श्रोताओं अभी आपने सुनी मारवाड़ी कंटेंट का पहला चेहरा प्रतीक मुत्था के साथ नीतीश की ये खास बातचीत, जिसका प्रोडक्शन रहा राजेश लामरोड। प्रोग्राम युवाणी जारी है, सुनते हैं म्यूजिकल ट्रैक, इसके बाद फिर से मिलते हैं।

0: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपकी फेवरेट प्रोग्राम युवानी में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ। और दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल फील्ड में हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है।
1: जी बिल्कुल, नीट यूजी 2026 की री एग्जाम की डेट जो है वो अब ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है।
0: बिल्कुल राहुल, और वो बताया जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स का री एग्जाम होने वाला है उनकी परीक्षा अब 21 जून 2026 यानी रविवार को आयोजित की जाएगी।
1: तो दोस्तों, एडमिट कार्ड और एग्जाम गाइडलाइंस को लेकर भी स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड और नर्वस दोनों दिखाई दे रहे हैं।
0: वैसे सच कहे राहुल, नीट की तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का भी एग्जाम होता है।
1: लेट नाइट स्टडीज, कॉफी, नोट्स, रिवीजन, हर नीट एस्पिरेंट की जिंदगी अभी पूरी एग्जाम मोड में चल रही है साहब।
0: लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्रेशर लेना सॉल्यूशन नहीं है।
1: फोकस रखिए, रिवीजन स्ट्रांग रखिए और खुद पर कॉन्फिडेंस को कभी कम ना होने दीजिए।
0: हमारी तरफ से सभी नीट एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आप मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। और फिलहाल मूड को थोड़ा रिलैक्स करते हुए गाने के साथ ओनली ऑन 102.1 एफएम पर आगे बढ़ेंगे। इस आवाज का नाम राहुल, मेरे साथ आ जाएं
0: नितेश।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ। राहुल, युवानी प्रोग्राम

0: चल रहा है, यानी युवाओं का प्रोग्राम और यूथ से रिलेटेड कोई बात नहीं हो तो बात कुछ अधूरी है। और जितने भी युवा साथी हमें सुन पा रहे हैं और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात उनके लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि सी टेट एग्जामिनेशन 2026 की बात चल रही है।
1: जी बिल्कुल, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि है 10 जून 2026 तक। आप जो है वो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने BSTC कर रखा है, जिन्होंने BEd कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी बड़ी ही फायदेमंद है। इस भर्ती के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है CTET.NIC.IN पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने। प्रोग्राम युवाणी ऑन।

0: बातें और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आज का युवानी यहीं तक। अपना ध्यान रखिए, हेल्थी रहिए और लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी का असली मजा वही है जब सपने भी बड़े हो और दिल भी खुश हो। मैं हूँ नितेश और मेरे साथ
1: इस आवाज का नाम राहुल। आज के कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति है राजेश नामरोड। हमारे साथ कंसोल पे मंजू। हम मिलेंगे फिर एक शाम नई बात और नए जोश। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।
2: श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
4: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
5: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
3: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी।

कार्यक्रम विवरण में पहले जानिए आज के शेष एवं कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण एवं प्रसारण संबंधी जानकारी।

कार्यक्रम विवरण में पहले जाने आज के शेष एवं कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण एवं प्रसारण संबंधी जानकारी। गैर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सुगम संगीत, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:15 पर। काश्तकार भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी सायं 7 बजे और सीमाड़ेरी गूंज का समय रहेगा शाम 7:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत रात 8 बजे और 9:30 पर। आपके ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत, ये फरमाइशी कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे फिल्मी नगमे रात 10 बजे। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपने सुनी आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब जानें कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कल रात 10 रिले किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम श्री रामचरितमानस आप सुन सकेंगे कल सवेरे 6:05 पर और भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन सुविचार के संग 6:15 पर। गैर फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे क्रमशः सवेरे 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, ये कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे कल सवेरे 10 और दोपहर 12। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, इसका प्रसारण होगा कल सवेरे 7। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, समय रहेगा 8:30 पर और साथ ही दिन में 1:15 पर महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम नारी वाटिका। किसान भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी 7:30 और कृषि जगत का समय होगा दिन में 1:05 पर। चर्चा का विषय होगा इस माह किए जाने वाले कृषि कार्य। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी शाम 5 और 7:30 पर होगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपने सुने आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आप सुने एक देशगान समूह स्वर में।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे देशगान समूह स्वर में ए भारत माता नमस्कार। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानाम् आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्याम् ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावान् च चर्चितवन्तौ।

0: क्षीयविषयेषु परस्परहितसम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदानप्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डले षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षे श्री अराघचीवर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेशमन्त्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रकाशिते सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणम् इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चाम् उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य एकविंशति दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य तृतीय दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपरलीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां माता पितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिक माध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: आर फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स डीपली माइंडफुल ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज। फॉलोइंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 3rd May, वी वर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट नो जेन्यून कैंडिडेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ फेयर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द एजुकेशन माफिया।
1: एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: शिक्षा मन्त्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुम् उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामिवर्षात् सङ्गणकाधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी।
2: द सीबीआई हैज टेकन प्रॉम्प्ट एक्शन इन द मैटर। ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द रूट इशू विल बी एड्रेस्ड बाय कंडक्टिंग द नीट एग्जामिनेशन इन अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ द करंट ओएमआर बेस्ड सिस्टम।
1: अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोध रूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः गंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साई राजरंकीरेड्डी चिरागसेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले 2 सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानी

0: सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में यूएई की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेम्पर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार

0: ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉ मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम में 4 नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारी

0: अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वप्रेरित होकर ब्लॉकवार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं के विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। आठवें पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनेला। राज्य में जनगणना 2027 रा तत्काल मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून न उजू वेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो चावेला। वो क्लस्टर बनावन रा काम माए करीब 1,200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला। ये कारखाना माए हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला। इस आगे करीब 2,500 लोगों ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इन रा काम री शुरुआत कीनी। वह ईसा गई 400 करोड़ रूपये बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावा रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम रो उद्घाटन कीनो। इ मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश माए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला 2 साल माए 35 नीतियां बनाई। वह दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान न जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रातेत काम माय तेजी लावन री जानकारी दिनी। श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथे अटल ज्ञान केंद्र खोलन माथे ध्यान दे रही है। इ मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश माए सेमीकंडक्टर बनावन रा 12 कारखाना लगाई चिया है और लाडला 12 साल माए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का माए 6 गुना बढ़ोतरी सागे। अब कुल उत्पादन 13,00,000 करोड़ रुपया रा लेवल के न पोग रियो है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13,00,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इंड्र

0: उत्पादन रोसब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है। वे आज जयपुर में राखी जिया राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पाछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद में काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है। वह कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हलका माए देश माए अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बधावो देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी जी है। वह कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण ना ध्यान रखता थका काम कर रही है।
1: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रातेत काल मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो चावेला। 14 जून ताई चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला। इन सारू प्रदेश में नैरी नैरी ठोणा सिखावण शिविरा रे जरिए प्रगणका ने जरूरी सिखावण दीरी जी। वाने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंदराज करण परिवारा री जानकारी दर्ज करण और सर्वे रे दौरान राखी जावण वाली सावधानियां रे बारे में अभ्यास कराई चियो। इन बीच स्वगणना करण रो आज आखिरी दिन है। स्वगणना रे जरिए लोग खुद 1 मई यू वारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा रहा है। जयपुर में 23-25 मई ताई राखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टाल दी रिची है। कृषि आयुक्त रियोरू आज इन बारा माई हुक्म जारी करी जिया। ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबुधाबी माए वठेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी। इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों बीच कारोबार जुड़ी चर्चा करी जी। प्रधानमंत्री मोदी यूएई माथे हाल ही माई करी जी हमला री करड़ी निंदा कीनी। वह मुश्किल बगत माई यूएई रा काम री सराहना करता थका यूएई सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी। श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर माई बातचीत और कूटनीति आगे चालन रो गेलो है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: देश रा मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ने ओजूली जावेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा रे बारे में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन सारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला। श्री प्रधान कहो कि 21 जून ने ओजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नहीं ली जावेला।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो के हाल ताई ओएमआर शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता साल नु कंप्यूटर जरिए ली जावेला।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री कहो के विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनबारो मौको दियो चावेला। मंत्री कहो के सीबीआई नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है कि 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द करती रिची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य केवल इंसान रो निजी मुद्दो नी है बल्कि पूरा समाज और देश हु जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिलारा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता थका कहो कि इरा तेत 5 लाख रूपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व माए बाघां री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व माए सावचेती बधा दिरीची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान राखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगा दी नी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघा माए फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व माए 52 बाघ है जाने संक्रमण बचावन सारू आरएसआर रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चारियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद माए राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप माए सोना रो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला माए कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग माए सोना रो तमगो जीतन वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरब मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाडला 24 घंटा माए आंधी और बारिश वेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इणु गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ही कई छोड़ा ऊंचो ऊंचो तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चारियो है। दूजिकानी आज दौसा करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब काल ओजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजो सुन ले राव सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले राव। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 राते कालू मकानारी लिस्ट बनावन रो काम करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून न ओजू भेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। काश्तकार भाई बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज विशेष है झूम को।

गांव ग्वाड़ अर खेत खलियान री बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनना ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारों फरमाइशी कार्यक्रम झुमको। झुमको कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी मां मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरिठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आणा घना सारा साथी
0: राजू राम सेन पद्मा सेन प्रतिज्ञा सेन और रामनिवास सेन माने कागज लिखियो है खारा बेरा भीमावता लूणी सु
1: गांव अरनियाली तहसील धोरी मीना बाड़मेर सु फरसा राम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण शारदा खत्री भाग्यश्री हार्दिक खत्री सूरज देवी और सगलो परिवार ओ ईमेल भेजियो है भोपालगढ़ सु धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा और पूजा परिहार भोमेश परिहार माने ईमेल भेजियो है डूंगरपुरा शेरगढ़ सु गांव रामपुरा भाटियान सु माने ईमेल भेजियो है राम सिंह देवासी और थाना राम देवासी
0: खोकरा मारवाड़ सु लिखन वाला है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन अर आना सगला घरवाला और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड गांव नारवा इंद्रो का सुन नरपतलाल सोनी शिवम और वैशाली खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाली जिज्ञा देवी श्रीमाली सीमा खुशी विशाल मन्नत सुनील किशोर ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगलो

0: परिवार।
1: गांव केलवाद सोजत सू और कागद लिखियो है सुरेश मेघवाल, मंजू, निशा और कृष्णा मेघवाल।
2: कागद आयो है धोबी घाट इंदिरा कॉलोनी जोधपुर सू, लिखन आला है नंद किशोर बारिया, नंदू, धनवंती, कालू, सुमन, चांदनी और आनो सगड़ो परिवार।
3: भोपालगढ़ सू घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी।
4: गांव चाडी सू उत्तम चंद छाजेड़, राणूलाल छाजेड़, शांतिलाल छाजेड़, कमला देवी छाजेड़ और आनो सगड़ो परिवार।
3: आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।
5: चुलमी

राजस्थानी लोक गीतार लोक भजना रो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष सोडा, भव्यांश, रमनदीप और राम किशोर। ओ ईमेल आयो है पाबू राम, तेजा राम, मनीष, सुमता बेनीवाल और आना सगला घरवाला, नेवरा रोड तहसील ओसिया सु, गाँव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह, मंजू कंवर सोडा, मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर। कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर और रमेश मिगलानी रो। और कागद आयो है गांव चैनपुर।

0: तहसील धोरीमीना बाड़मेर सु जगदीश भारती, विजेश भारती, नरेश भारती और मलिता गोस्वामी रो।
1: बाले रो ओ कागद आयो है जय नारायण सोलंकी, राकेश सांकला, जितेंद्र सोलंकी, लक्ष्मण हरीश विष्णाराम, गोपीलाल सोलंकी, इंदिरा राम सोलंकी और आणा घराला।
0: झालावाड़ सु ओ कागद आयो है, लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर, काना सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी।
2: रातनाडा सु नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, प्रीति भाटी, अठेसुई माणा नियमित श्रोता बाबूलाल मरेठा और आना सगला दोस्त।
0: उमरिया सु दीप्ति रजावत, सोनम राजावत, रेखा और रेशमा राजावत। आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

0: निका सुरता पूजा और शारदा मेघवाल रो
1: पांडव नगर धोरीमीना सु ईमेल भेजियो है देराम राम गोदारा
2: और कागज दुमाने कने आयो है गांव तापू तहसील ओसिया सु लिखियो है संतोका राम मेघवंशी पटकू धीरू अशोक भाटी कुसुम भाटी आरती एलची बिदकी भाटी लाखाराम भाटी दिलीप पार्वती दिव्या और आना सगला घराड़ा
0: गांव खींदा सरसू ईमेल भेजियो है कानाराम चौहान सुखाराम श्याम सुंदर और तपस्या
3: खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सू कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका
4: गांव कंटालिया सू भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य हिंसर नागौर सू कल्याणमल प्रभु राम बंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्य और आना सगला साथी
0: गांव मेलाना सू छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

साथियां ओहो माणो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अब कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ नमस्कार।

पतरी लिखूं पी वने मारो कागज भीज गयो अरे नेने जलड़ो मावे नहीं मारो हिमड़ो।

रात अंधारी पवश पड़े कद पहुंचा पाला ए जुना बेर जितारिया जुना बेर जितारिया मारा बेर।

काश्तकार भाई बहन अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: आंगन होगा, आंगन होगा भाई आंगन।
1: अरे बारे रामेश्वर बारे,
0: ओ बा राम राम
1: राम राम राम राम। आज का कोई कोई मैं आओ कमरे में आओ
0: भाई, कमरा में आवा मैं तो थारे मन में आयोड़ा थे कमरा री बात करो।
1: अरे भाई पहले कही यहाँ नीमड़े हेठ बैवे नी थे ड्यूटी छोड़ा आगे नेड़ा हो जाओ। मैं आज काल हूँ कहूँ हैंग दिन नहीं कमरे में बैठो रू गुडाल में वो कह नी मारे कूलर लायोड़ो है
0: नयो कद लाया
1: मंगायो भाई कह नी भाई पास कह नी कह चमड़ी जा दमड़ी नहीं जाए तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं
0: दमड़ी ढीली करी
1: मैं दमड़ी चली जाए पर चमड़ी नहीं जाए।
0: ओहो मतलब अब जाए रे चमड़ी रो मैं तो हम जो थे दमड़ी है जगी निकाल रही
1: बस कह दिया मैं
0: तो एक आधी एसड़ी लगाई दू
1: नहीं तो बात छोड़ो भाई मगज में कहूँ कोई गर्मी घनी चली दिन बहुत तो फिर तावड़र में अटिया
0: करो बा आगे दिमाग ला रहा ना गर्म हो और थे गुद्दी में फटी ठोकर
1: नहीं नहीं थारे कई बात हावल कावल घड़ी आऊंगी।
0: देखो बा आज है मैं ता नेला की
1: थी है
0: आज है ना विश्व परिवार दिवस है।
1: परिवार तो है ही है
0: परिवार है आपन नवला बारो खुंटो है नी जो को कुनबो है नी जी आपन टोटल 42 जना हाँ भाई भाभी नानेरा
1: कुटुंब कबीलो है भाई।
0: हाँ
1: रहता
0: अबे कट रहता है अबे तो मैं मारी लुगई।
1: अरे बो हम ठीक है जी का है रे भाई अपन तो एक धड़ो है
0: एक धड़ो है
1: एक धड़े में पर्दा दे रहा है घर क्या नहीं क्या पूरा है कलुम्बे बेड़ा बैठा
0: बेड़ा बैठा हगड़ा छोटा लगा नहीं
1: आज गवाड़ी है नी बरियोड़ी लागे
0: लागे
1: कोई भाई सैन है भाई गिना तावे भाई देखे भाई आज भी तो करता है
0: नेड़ो आवे हगला अपना परिवार साथ बैठा ना एक तो छोका लगा और एक घर हरे जेर दुनिया हरा वे देखो साहब है जगह नवला बार पूरी है जो को फली बेली बेटी।
1: अरे भाई हूँ कौन एक हांडी में लून ने कह के वो घर में शपथ में
0: हाँ?
1: अच्छा नहीं तो नारा नारा कह नहीं भगोलिया चढ़ा दिया तो बजवा है कह के भगोला बात जाये
0: ब्याह करते ही छोरिया कह के छोरा ने कब्जा में कर ले नारा कर दे।
1: अरे कौन
0: खाना तो बड़ी कब्जा कौन करिया नहीं हो।
1: अरे हम दिन माते बात है भाई हम दिन माते है हम जाप आप रही है और कोई अड़ो को कह नहीं दे देखो टाबर है टाबर पड़ो कर दे तो बाद बूट या हम जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: नारा हुई थार फायदो कहीं धंधा ढीला लाग दी
0: कौन लागे
1: देखा ने बेटा रोटी जीम लो माने जिम्मा दो बात थे मारू कर लो मैं थारू कर ला तो हो कोई देखे थारे तो है जोश और मारे कने है भाई देखे तजुर्बो
0: तजुर्बो
1: तो तजुर्बो मोटो है जोश मोटो है
0: तजुर्बो मोटो है। इरो एक बात याद आई मम्मी मम्मी कही बड़ी कियो कि मैं ब्याह कर आये नी बार नहीं नहीं कियो मारे दो देवरा बी टेम कही है कि छोरिया कम पड़ी उड़ी लिखी उड़ी दसवीं दसवीं पड़ी उड़ी दो देवरा नहीं आई क्यों मैं तो ही अनपढ़ आई बार एक महीना रिया बर्तन भांडा भाजन ढुका जन कियो थार बार में हम जाया कि भाई थे बात करो क्यों मैं अनपढ़ हुई घर ने भेड़ो रहा क्यों और टूट नहीं दी और आज भी देवरिया ने कहे जेठानी जी थे यार घर भेड़ो रही है
1: बात बहुत त्याग कोई कोई नहीं करना पड़े रे भाई
0: सही
1: क्या करो तो कह नहीं तो वो कह के भाई लड़ा तू मैं होगा तू कुछ लगा तो हकरा कटी को लागो
0: कौन कौन कौन लग गया
1: क्या भाई हंसा सरवर ना तो जेल जेल खारो हो अरे डाबर डाबर डोलता भला ने कैसी
0: भाई रे भाई का मतलब है
1: भाई देखे हंस है जो तालाब समुद्र में रहे
0: ठीक है
1: जे मान लो समुद्र तालाब कोई भूख हो तो हंस वो तालाब छोड़ नहीं जाए।
0: ओहो वीर प्रति वफादारी है वीर।
1: हाँ उठर उठ रहे जन क्या भाई कि हंसारा गुण नारा है बुगला रा नारा। तो बुगला ही दौड़ा हंस ही दौड़ा
0: सही बात है
1: ठीक है
0: लक्कड़ नारा नारा
1: तो भाई देखे कि जिका कह संस्कार है मैं तो आप रे कह नहीं के चार जे मान लो बासन खरबड़ी जा तो यहाँ पे ठोड़ मत।

0: मेल दो,
1: मेल दो, सही
0: और
1: बात
0: कोई
1: है।
0: कह नहीं मारी माते हैं थारी माते उतर जा तो भाई रे उन्हों कहीं नहीं है। मैं तो कहूँ आज तो मैं हो रहा दिन आई जा हाँ, मैं तो काल दुकान रा दिन देख रहा हाल, भूख रा दिन देख रहा हाल, कह नहीं मुसीबत रहा मैं जीवता है। जे मैं यू कर दी हो तो थार को ही हो तो
1: की कोनो तो मैं तो बचावा समस्या होती फोड़ा पड़ता।
0: नहीं नहीं थे तो बस कहीं है क्या छकड़े माते क्या है सामान गाली फिरता।
1: हाँ बात तो सही बात
0: दोरी
1: है,
0: घनी मंडी है
1: द्वारी मंडी, द्वारी
0: ठीक
1: मंडी
0: है नहीं।
1: आ तो बड़ी हेर मांड दियो।
0: अरे के कौन भाई, मैं तो कहूँ बड़ा पड़ो थारो क्या थे है जिको क्या नहीं खोद खोद लाला रटमिन का हुना हो जो मारी सो को ला
1: छो को
0: शर्म
1: कोनी। अरे घर में लुगई लक्ष्मी है बा, पूरा परिवार ने एक बांधे।
0: आ तो है ही
1: हाँ
0: भाई
1: ओ नवला बा, एक आज अखबार में रिपोर्ट आई के अमरीका रमाई ने जद पूरो परिवार भेड़ो रहे ये भोजन करतो ना, जन बटे संयुक्त परिवार रहे तार हंसी खुशी रहे माहौल बहुत ज्यादा हो। अब बटे परिवार का ही एक 20% ही भेड़ो खानो खावे, जन के एक बटे परिवार बिक्रन डुगार भी रस्ता में था अपनो भारत चल रही है।
0: अरे है वो तो हम देखे एक तो एक छोट माते कोई बड़ी तो बाढ़ता
1: हाँ
0: तो बचत होती।
1: सही है
0: मैं तो कौन लून मिर्च रही होती, तेल फूल रही होती, सब्जी सब्जी रही होती,
1: हाँ
0: थोड़ो कोई हल्लो ले तो कोई थोड़ो ले तो आज मैंने बता कि जटे जटे फौज है,
1: हाँ
0: फौज में खानो एक छोट बने को बने,
1: एक छोट बने अगला राते
0: वर्दी वाली कोई फोर्स है उठ बने को बने,
1: हाँ
0: तो भाई नर नर बना लो कर
1: नार नार बच वो संगठन एकता को अंदर
0: ही बात है। देखे भेड़ो जी मू कह नहीं ये तो बड़े
1: ये तो बड़े
0: देखे क्या मन में एड़ी होनी चाहिए
1: हाँ
0: क्या भाई देखो का हमारो मुकड़ो गीत हूं तो आया नहीं
1: हाँ
0: ओ मन हूण मन बड़ो दाई आवे
1: दाय आवे ना तो आपन ओ कहीं है के नवलाबा जीवन मृत्यु जो की फिल्म बनी ना बीरो हेर आनंद बख्शी साहब जगह बहुत बड़ा लिखा रहा बे तो लिखियो और ये जगह तान पूरा पेटी बाजा बजे नहीं ये आपन लक्ष्मीकांत जी प्यारे लाल जी को नहीं बे है जगह ये म्यूजिक तैयार करियो गाना और मोहम्मद रफी साहब री आवाज देखो मैं तन हुणो कितनी मीठी है।
0: ओ मता मंगेशकर ही हकरो गावे
1: लता जी
0: हाँ तो हुणा
1: लो हुणो।

0: भाई वाह होगा, धक धक धक धक है जी तो
1: के का मतलब तू धके धके हाल में लार लार आलू।
0: आम की कोने आगे बदो आगे बदो।
1: आगे बदा जन टी एन सेशन साहब है और आ रहे है जे की आज आ रही जयंती है और ए देखो व्याख्या था नौकर सा राजनेता हा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में इतो बढ़िया काम करियो चुनाव आयुक्त रिओड़ा।
0: ओ ठा ठा ठीक ठीक ठीक ए है जी को कह नहीं साफ सुथरा वोट कराया।
1: अरे भला बना लाइन मत लिया या
0: लाया लाया हाँ। लाया केरल रहा हो बढ़िया हाँ। बड़ा बहादुर
1: बहादुर
0: कानूनी पालना करा छोड़ी
1: ए लाइन मत लिया
0: हाँ, है तो भाई देखे एड़ा बिरला मिनखान कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है
1: हाँ।
0: मंदेरा भूल चलाऊ बड़े
1: अगलो नाम है जॉनी वॉकर साहब और देखो के जॉनी वॉकर साहब है ना आर है जे की आज जयंती है और एक आई है भारतीय फिल्म आर मैंने हंसा बने देखो विदूषक होता पुराना जमाना महीने तो एक कॉमेडियन हाँ हंसा होता है।
0: ओ ठीक ठीक है जॉनी वॉकर
1: जॉनी वॉकर साहब
0: हाँ तो और मैं मिलड़ हूँ
1: मिलड़ा ना मुंबई में
0: हाँ छोटी छोटी मुस्सा ही
1: ये तो बार 2003 में फोत हुआ
0: भाई देखे जो जग जाओ काम कर गया
1: हाँ।
0: तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है फूल
1: अगलो नाम है सुखदेव जी। सुखदेव जी री आज है जी की जयंती है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख क्रांतिकारी हा जका अपने लाला लाजपत राय माते लाठी चार्ज योनी बीर कारण है जी की बारो मृत्यु रो बदलो लियो और भगत सिंह मार्गदर्शन मैंने बहुत मोटा मोटा काम किया।
0: अरे भाई हाजी बात है शहीद आजम भगत सिंह
1: हाँ।
0: सुखदेव राजगुरु
1: तिगड़ी
0: तिगड़ी ही तो है तो भाई देखे मोटा कह नहीं बलिदानी है तो आने कोई नहीं भूल सके पर बाते पौर धोक दा कोटी कोटी नमन करा मंदरा फूल चढ़ाओ बड़े।
1: देवेंद्रनाथ टैगोर साहब है आज आ रही है जी की जयंती है भारतीय दार्शनिक धार्मिक सुधारक हा और एक कहीं करता ए ईश्वर है जो को के समाज है ना समाज रे मैंने ईश्वर वास है आप समाज रो उत्थान
0: नर में नारायण है
1: नर में नारायण है
0: रविन्द्रनाथ टैगोर हा के
1: देवेंद्रनाथ जी
0: कलुम्बे
1: हाँ।
0: तो को दर्शन देन गया है बात बताई तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ाओ भले।
1: अगलो नाम है बाबू सारो
0: ओ बाबू सा
1: समझ का
0: हाँ हाँ ठीक ठीक है भैरू सिंह जी।

0: सिंह जी शेखावत्री आज है ना, आज हमारी पुण्य तिथि है।
1: अरे भैया भैरव सिंह जी तो कह
0: तो माँ घड़ी बार देखे मैं
1: अरे हूँ तो पंचायत ही रह तो
0: है ना।
1: हाँ मैं पहले थानदार
0: थानदार
1: राजकाज में भाई जग चाहो काम करियो।
0: मैं तो मुख्यमंत्री रेवन साथ साथ भारत रा उपराष्ट्रपति रियो।
1: अरे हाँ भाई तीन बार मुख्यमंत्री लिया दो बार लिया
0: हाँ, मिलता हुआ ना।
1: मैं तो घड़ी मिली मैं तो अरे गड़बाया राग था।
0: हाँ
1: मैं जहाँ से राजी होता माड़ा पहरा तो हूँ मारू मन के मैं कोई कहता हूँ बाबू साहब वो काम करना है तो कहता कर दिशा।
0: अच्छा
1: आ बात
0: बन ला शेखावटी रहा।
1: हाँ तो भाई देखे भैरू सिंह जी ने कोई नहीं भूल सके और कहो है कि गरीब ने गणेश मानियो और आप सेवा चाकरी चौकी करी आदानी कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चलावा नैन भाई देखे।
0: अपन भैरू सिंह जी है ना भैरू सिंह जी शेखव साहब रे रातानाडा रे महीने अपन जोधपुर रातानाडो है ना अटे साइड रे महीने रातानाडा में बहुत मोटी प्रतिमा लागी काले अपन भारत रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आया और मारे प्रतिमा अनावरण करियो।
1: देखे देखे तो कह बिरला मैंने कहा तो हाइया हमें ले मारी कोई हिम्मत जी हो रो
0: हड़को हाथ करूँ की तारे
1: हड़को हाथ मारो तो करनो को नहीं हूँ थारे कर दे।
0: नहीं नहीं हड़को हाथ गाणो होना
1: अर्ज सुना
0: अर्ज सुनो लो फूट रो अर्ज साजी रहे।

0: वाह भाई रे मकी कोनी बुआ जाओ मैं बैठा का टाइम मत गटू हिदो ऊपर और इतो ही है जो कहनी आज मारी सेवा चाकरी है आप
1: सेवा चाकरी कहीं है के जगह अपने केम करी पसा बना बारी भी आज है जगी पुण्य तिथि है और बे एक भारतीय सैन्य अधिकारी और राज नहीं खा
0: अरे हाँ भाई कह जनरल करिए पहा
1: हाँ
0: है वो तो कैसे कैसे है जो कहनी है फिर जुरा मूणु है नोल को तानी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है
1: यदुना सरकार है नी
0: हाँ
1: यदुना सरकार है बारी भी आज पुण्य तिथि है और ये भारत सिद्ध इतिहासकार इतिहास
0: अरे हम को भाई थारो मक्का नहीं डापा सू घोड़ो मगज है
1: हाँ।
0: अर्जुन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोता, आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनते हैं ये पहला गीत फिल्म लगान से। ये दो गाना उदित नारायण और वसुंधरा दास के स्वर में। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार ए आर रहमान।

श्रोताओं, कार्यक्रम है फिल्म संगीत और लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बादल से। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम के स्वर में अगला गीत।

हरिहरन और अलका याग्निक के स्वर में। ये अगला गीत फिल्म गुरु से। कलम है गुलजार की और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म बागबा से। ये तो गाना उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

अगला गीत सुने फिल्म जिस्म से, श्रेया घोषाल के स्वर में अगला गीत। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार MM करीम।

फिल्म हलचल से लीजिए सुनिए अगला गीत उदित नारायण के स्वर में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है विद्या सागर ने। इस गीत में उदित नारायण का साथ दिया है सुजाता ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म जब वी मेट से। शान और उस्ताद सुल्तान खान के स्वर में ये गीत, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जोधपुर चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन

0: के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेटिक प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का

0: समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजेन्द्र शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में

0: राकेश जैन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global

श्रोतो, आप सुन रहे थे भक्ति रचना पंडित जसराज के स्वर में। ये था कार्यक्रम सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब सुने अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म खुद्दार में। कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में ये गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में ये अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म अनाड़ी से। गायन स्वर है उदित नारायण का, गीत लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा से। अलका याग्निक और नदीम और उदित नारायण के युगल स्वरों में ये गीत कलमबद्ध किया है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, ये गीत फिल्म सनम से। दो गाना कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत के स्वर में, गीत है समीर का और संगीत है आनंद मिलन का।

श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनिए, फिल्म कयामत से कयामत तक। गीत लिखा है आनंद मिलन ने और संगीत दिया है मजरू सुल्तानपुरी ने। इस कार्यक्रम के पश्चात आप सुन सकेंगे और फिल्मी नगमे कार्यक्रम मन चाहे गीत में, जो आधारित है आपके पत्रों और ईमेल्स पर। तो पहले लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आधारित है आपके पत्रों और ईमेल्स पर। फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आपकी फरमाइशें पूरी करता है। जिन गीतों की फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आज आपके इस कार्यक्रम में मैं हूं मंजू लुंकड़। आपकी फरमाइशों को ध्यान में रखते हुए डीजे सुनते हैं ये पहला गीत इस कार्यक्रम का।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: ये गीत हमने लिया है फिल्म आंधी से।

श्रोता हमारे ईमेल एड्रेस नोट करें, manchageeet531@gmail.com। मनचाहे गीत 531@gmail.com।

श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है अदीबा नाज़ की। ये हमें लिखती हैं फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी के साथ। अगली फरमाइश हमें मिली है नारायण खर्चे की, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे का। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें लिखते हैं, इनके साथ ललिता खर्चे भी हैं। अगली फरमाइश दोस्तों हमें मिली है रामचरण विश्वकर्मा की, इनके साथ साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इन्होंने अपने गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से। साथ ही हमें लिखते हैं एचआर पांड्या भी। पांड्या जी हमें मेल लिखते हैं गुवाहाटी असम से। इनके साथ फरमाइश भेजी हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या ने। साथ ही किशोर कुमार सनावले ने हमें लिखा है, उनके साथ फरमाइश भेजी है रेखा सांवले ने, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले। ये सभी हमें फरमाइश भेजते हैं दरबार कॉलोनी सनावत से। साथ ही सुपन तैड़े ने हमें मेल भेजा है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से। इनका साथ हमें ये फरमाइश अगले गीत के लिए लिखा है वसंतराज भोजने और निवृत्ति आडोकर ने भी। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म दूसरा आदमी से।

विजय सुरलकर और रतनमाला भी हमें लिखते हैं, साथ में है कुसुम सुरलकर, मौताला महाराष्ट्र से। लीजिए सुनते हैं सबकी पसंद का ये गीत।

छत्रपति संभाजीनगर से भी हमें ये फरमाइश मिलती है, राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश और साक्षी साथ में है।

कमल साहनी हमें लिखते हैं, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफजल मलिक, साथ ही संदीप मक्कड़ भी, रामगढ़ कैंट झारखंड से, लिपि साहनी और सुनीता साहनी।

मैसोल सीतामढ़ी से हमें लिखते हैं अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरक अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरीज वसीम, नदीम, शमीम, ममता, पूनम, कोहात बिहार से, शेख सफ़र हसन और वर्गीस सफ़र।

श्रोताओं की कार्यक्रम है मन चाहे गीत। तो लीजिए सुनते हैं कुछ और नाम जिन्होंने हमें फरमाइश भेजी है अगले गीत के लिए। ये है कीर्तनपुरी गोस्वामी, ये हमें फरमाइश भेजते हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। इनके साथ हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। साथ ही एक और फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। अगली फरमाइश हमें मिली है संजय ढींगिया की, ये हमें लिखते हैं बागपत यूपी से। इनके साथ हैं नमन और अपार। अगले गीत के लिए हमें भेजा है फरमाइश स्वरण सिंह ने। स्वरण सिंह हमें लिखते हैं ठाकुरा वाला से, गांव लोहगढ़ से। इनके साथ इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह ने भी। सुदर्शन शाह हमें लिखते हैं अपनी फरमाइश के लिए पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह के साथ उनके परिवार वालों ने भी हमें फरमाइश भेजी है पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र शाह ने। सुधाकर जाधव, इनका पत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। राधेश्याम शर्मा हमें लिखते हैं गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और सचिन शर्मा भी हमें लिखते हैं इस अगले गीत के लिए। साथ ही ये पत्र हमें मिला है मोहली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल, डॉक्टर अमीन दीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगली फरमाइश हमें मिली है मंगल जनागल की, ये हमें गीत के लिए फरमाइश लिखते हैं पत्रोड़ा गंगानगर राजस्थान से। इनके साथ है रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। अगले गीत के लिए भी हमें एक और फरमाइश मिल चुकी है। दोस्तों गीत शुरू करें उससे पहले ले लेते हैं इनका भी नाम, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष। ये हमें लिखते हैं बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत फिल्म कटी पतंग से।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम मन चाहे गीत और आप सुन रहे हैं अपने फरमाइशी गीत। दूसरा गीत शुरू करने से पहले कुछ फरमाइशी नाम। हमें ये लिखते हैं पत्र अमोल मानकर, अमोल मानकर, शोभा भाई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। ये अपनी पसंद के लिए हमें फरमाइश भेजते हैं बुलडाणी महाराष्ट्र से। साथ ही हमें ये अगली फरमाइश मिली है निसार अली की। इनके साथ फरमाइश लिखी है धनोर तोलीवाल झा उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद बेबी आयान, और इन्होंने अपने गीत के लिए हमें जल्द से जल्द सुनवाने की फरमाइश करी है। तो लीजिए जल्दी ही सुनाते हैं आपका गीत। उसे पहले लेते हैं कुछ और नाम। हमें अगला पत्र मिला है नवी हसन का। हसन साहब हमें लिखते हैं शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद अनम और यशफ अब्बासी के साथ। और हमें ये मेल मिला है इनके साथ कुछ और साथियों का, मारहरा दरवाज़ा एटा से। अगली फरमाइश हमें भेजी है पूनम गनेजा ने। तो पूनम जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें ये मेल लिखा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गनेजा, पूनम गनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित ने हमें ये मेल भेजी है। ताज मोहम्मद की अगली फरमाइश हमें मिली है, इनके साथ हैं गुलाम साबिर राही।

मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। प्रवीण रनपरा ने भी हमें फरमाइश लिखी है गुजरात गांधीग्राम से, प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने। रमेश चौहान ने हमें अपने गीत के लिए फरमाइश लिखी है, तो रमेश जी बहुत कुछ ही पलों में हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनाएंगे। ये रमेश जी हमें लिखते हैं कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से। इनके साथ हैं इनके साथ ही रमेश चंद्र चौहान, मोहानी चौहान, कल्पे चौहान और बेबी गर्वी। और हिमांश ने भी हमें इनके साथ फरमाइश लिखी है। साथ ही हमें अगली मेल और मिलती है पंकज शर्मा की। इनके साथ है जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और हरिपल कौर भी। सुधीर नूतन और संदीप गगलानी भी हमें इनके साथ मेल लिखते हैं। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म घर से।

भोपालगढ़ राजस्थान से हमें लिखते हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। राजकुमार हमें लिखते हैं सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से, राजकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़।

दोस्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। तो कुछ और फरमाइशें लेकर हाजिर हूँ मैं इस कार्यक्रम में। ये फरमाइश हमें मिली है मोहम्मद कमर की। ये हमें लिखते हैं गनोर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। जल्द ही सुनाएंगे इन सबकी पसंद का ये अगला गीत। साथ में है मास्टर खिलू परवेज। खिलू परवेज जी हमें लिखते हैं कुंडुड़वारा यूपी से। इनके साथ हमें फरमाइश भेजते हैं बेगम इमराना नाज, नवाजीज शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। हमारे कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ती है इन सब फरमाइशी गीतों के नाम के साथ इनका नाम बोलने से और इनकी सुंदर फरमाइशें सुनवाने से। तो अगला सुंदर गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है सप्रेम नमस्कार लिखते हैं काला बाजार। फिल्म का गीत हमें सुनाना चाहते हैं। कई सुनने वाले अलग अलग श्रोतागण हमें अलग अलग फिल्मों के नाम के लिए फरमाइश भेजते हैं, पर जो भी कॉमन गीत की फरमाइश होती है वही हम सुनवा पाते हैं आपको। तो लीजिए सुनते हैं गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री कानपुर राजस्थान से। लिखने वाले हैं राजू टुटेजा, खुशदील उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मनु, शिव सेठी करणपुरी, स्माइल टुटेजा। सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये अगला गीत, पर उससे पहले लेते हैं एक और नाम जो हमें अभी अभी मिला है, स्क्रीन पे आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। अरे छिपा जी, अभी तो आपका नाम लिया। आप सभी से निवेदन है कि बार बार एक ही गीत के लिए दोबारा फरमाइश, एक ही कार्यक्रम में अपनी बार बार फरमाइश ना भेजें। रविंद्र मोहनदास हमें लिखते हैं किशनगढ़ बिहार से, उनके साथ हैं आशा देवी भी। ओम प्रकाश जी हमें लिखते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश जी के साथ हैं उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबैया नवादा, जिलान गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। कुछ और नाम भी हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हीरामणि वर्मा, हीरामणि वर्मा हमें लिखते हैं दतरंगी भटार पारा छत्तीसगढ़ से, उनके साथ परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखे लाल वर्मा। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत जो है फिल्म मुकद्दर का।

0: आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित ये कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें जिन्हें हम पढ़ के सुनाते हैं। आपकी फरमाइशी नाम के साथ हम आपको आपके पसंद के गीत भी सुनवाते हैं। तो लीजिए अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं कुछ फरमाइशी नाम। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से हमें ये मेल मिला है सोपान तावड़े का। इनके साथ है बसंतराव भोसले और निवृत्ति आडोकर। साथ ही हमें लिखते हैं रवि कुमार राहुल। इनके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, कुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हमें लिखते हैं सतीश अनेजा। हमें लिखते हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा के साथ हैं बिमला अनेजा भी। राजकुमार डूडी हमें लिखते हैं गांव हिसार से। साथ में हैं प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी। अक्षय सेन हमें लिखते हैं शिवाजी नगर खंडवा से। उनके साथ हैं राजेश सेन और सुरेखा सेन भी। अहमद फूल वाले हमें अगले गीत के लिए फरमाइश भेजते हैं। इनके साथ एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट है छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से। अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिचिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे इन सब की पसंद का अगला गीत। अनिल मोहन हमें लिखते हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और साथ हैं कैथल हरियाणा से मधु नायक भी। ये हमें मेल मिला है जॉन डिकास्टो का। जॉन डिकास्टो, रोजी डिकास्टो, पर्ल डिकास्टो और विलिस डिकास्टो, ये सभी हमें लिखते हैं जनकपुरी सहारनपुर से। मूसा शेख हमें लिखते हैं एक अगले गीत के लिए फरमाइश सनावत से। अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और शेख मूसा मोहसिन। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत फिल्म शहनाई से।
1: शर्मा के न जा।

आगे बढ़े उससे पहले कुछ फरमाइशी नाम और ले लेते हैं। ये फरमाइश हमें मिली है शब्बीर हुसैन की। उनके साथ हैं शहजाद हुसैन, संजू बाबा, आयमा अनम, मुदसर हुसैन। ये हमें लिखते हैं सब्जी मंडी बुलडाना से। अगली फरमाइश हमें मिली है नरेंद्र सुथार की। नरेंद्र सुथार हमें लिखते हैं नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। इनके साथ इस गीत की फरमाइश की है मनोज हिमांशु और पवन ने। कुछ श्रोताओं से निवेदन है कि अपने मेल्स हमें दोबारा रिपीटेड ना भेजें। एक बार आपने अपनी मेल हमें भेज दी है तो यकीन मानिए आपको वो गीत ज़रूर सुनाया जाएगा या आपका नाम ज़रूर ऑन एयर बोला जाएगा। तो अपना मेल हमें सिर्फ एक कार्यक्रम में एक ही बार भेजें। अगली फरमाइश हमें मिली है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी की। साथ ही हमें लिखते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से बाजार रोड मंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, मंसूरी कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लखूना और यश मंसूरी। गीत के लिए हमें एक और फरमाइश मिली है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये फरमाइश हमें मिली है विक्रम कड़वासरा की। उनके साथ हैं सचिन कड़वासरा, सतीश, योगेश, युधव और हनुमान सहारण। ये हमें लिखते हैं अगले गीत के लिए फरमाइश जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो लीजिए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म सरगम से।

श्रोताओं, कार्यक्रम है मनचाही गीत और एक नज़र डाल देते हैं बस कुछ चुनिंदा आखिरी बची फरमाइशों पर। सौराष्ट्र राजकोट से हमें लिखते हैं जूबी जगदीश गुजराती, कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी। ये एक और मेल हमें मिला है एसएम जावेद का। हमें लिखते हैं गुमला झारखंड से। इनके साथ हैं शगुफ्ता और अंजम। कुछ ही पलों

तुम्हें हम सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये अगला गीत। उससे पहले कुछ और फरमाइश इनाम। गांभीरा वाली फजील का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु। जिला खरगोल सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और आतुरपुर गोंगावा से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा। मलियान सरधना मेरठ से हमें लिखते हैं अनिल जैन, साथ में हैं संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीवियम। डीजे सुनते हैं इन सब की पसंद का ये अगला गीत। हमें मिला है इस गीत के लिए फरमाइश, फिल्म का नाम है शान।

0: श्रोता भी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक

0: स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakha. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change.